0: मुझ पर।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
3: एहसान तो आप हम पर करते हैं जो हमारे हम सफर बन जाते हैं, वो भी सुबह सुबह। Let me wish you all a very good morning. नीतू का प्यार भरा प्रणाम स्वीकार करें। सुबह के 5:04 हो रही है। Already Thursday morning, 18 तारीख हो चुकी है। बस आप कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहे, आबाद रहे, यही हम कामना करते हैं। चले, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड रेडियो मस्ती पर हम आपके साथ हैं, आपके हम सफ़र बने हुए हैं, वो भी म्यूजिकल हम सफ़र टिल 7 AM, 7 बजे तक। आपके मैसेजेस ऑन 549-912-94 पर, वर यू माइट बी, और काम पर जा रहे हैं, बोको आश रेडी हो रहे हैं स्कूल कॉलेज के लिए, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एंड हंसते मुस्कुराते रहिए, दिन को आप हल्का बनाते चलिए विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: पांच बजकर 25 मिनट बों कुराज टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क. बस उन्हीं आंखों को देखिएगा जिसमें प्यार ही प्यार हो, नफरत की जगह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटी सी दुनिया है. देखा जाए तो चार पल की जिंदगी, उसमें बस प्यार है, अपनापन है, आप हो हम हर है. ये गाने हैं ऑन रेडियो मस्टी 526. मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में हम हिंदुस्तानी फिल्म का सदाबहार गाना. आपके मैसेजेस

0: ये गीतों का नशा है भाई, ये कभी उतरता नहीं है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: देखते देखते 5:31 भी हो चुके हैं। Some more messages आपके नाम। Good morning.

जी आज मेरे बेटे का बर्थडे है दीपक जो आइलैंड में है, सो मामा सुमित दीदी है आरती, जीजू कमलेश, परी, आरवी, जयश सब परिवार की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। रिव्या जगापा से मनी शमर राजा बानी जिसकी फैमिली है खुबलाल, गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ पर कहा जाता है कि हैप्पीनेस इज लाइक अ किस, यू मस्ट शेयर इट, क्या बात है, ताकि आप उसको एंजॉय कर पाए। थैंक यू सो मच साधना, मुकेश, पूरे परिवार लालमाची से गुड मॉर्निंग आपको। सरिता जी कैसी हैं आप, फ्रॉम गुडलैंड्स पूरे परिवार के नाम। हाय नीतू, माधवी का फ्रॉम कुंगुमा कैसी है माधवी, नमस्कार जी पूरे परिवार के नाम, विशिंग यू टू अ हैप्पी नाइस डे अहेड। एंड शीला जी का मैसेज एक बार फिर, साथ ही साथ मोताई ब्लाउज से हैं कौन, इंदिरा, रेशमा, विमल, अंजू, केशव, कृषा, नील, साथ में मायशा, तानिया एंड पूरे परिवार। और यहाँ पर नीली घटा वाला गाना आपको अच्छा लगा, देवी जी कैसे हैं आप, नमस्कार, बस गानों को सुनते रहे, मूड को बनाते रहे, दिन की शुरुआत आप अच्छे से कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर दिन की शुरुआत अच्छे से हो जाए विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक तो पूरा दिन अच्छे से गुजरता है।

0: जग छोड़ दे लेकिन हम आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी के लिए वक्त हो चला है
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
0: चलिए जी शुरुआत एक बार फिर आज विजल आपके साथ।
2: एरीज मेष राशि।
0: आज का दिन भागदौड़ और व्यवस्था से भरा रह सकता है। मानो एक साथ कई काम आपका इंतजार कर रहे हो, लेकिन हर काम को जरूरी समझकर खुद पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। समझदारी इसी में होगी कि आप जरूरी कामों को प्रायोरिटी दें और संतान की ओर से कोई खुशखबरी दिल को सुकून देंगी और चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी।
2: टॉरस वृषभ राशि।
0: आज आलस्य को किनारे रखकर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने का दिन है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कई नई बड़ी जिम्मेदारी शुरुआत में थोड़ी घबराहट तो देंगी, लेकिन सहयोगियों का साथ आपका हौसला बढ़ाएगा। बोलते समय बस शब्दों का नियंत्रण रखें, क्योंकि छोटी सी बात भी विवाद खड़ा कर सकती है और परिवार में किसी मुद्दे को लेकर बहस होने की संभावना है, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति संभल जाएगी।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: आज नए काम की शुरुआत के लिए समय काफी अनुकूल है। यदि समय लंबे समय से कोई नया कदम उठाने की आप सोच रहे थे तो अब आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियां बातचीत से दूर होंगी और रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी। दूर रहने वाले किसी खास व्यक्ति की याद आपको भावुक कर सकती है। वैसे वाहन से जुड़ी छोटी परेशानी अचानक खर्च बढ़ा सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है।
2: कैंसर कर्क राशि।
0: आज आपका मन दूसरों की मदद करने और सेवा भाव में लगा रहेगा। जरूरतमंदों की सहायता करके आपको आत्मिक शांति मिलेगी। संतान के साथ अच्छा समय बिताने या कहीं घूमने जाने का मौका मिल सकता है, जिससे रिश्तों में और अपनापन आएगा। पुराना लेन देन जो लंबे समय से परेशानी दे रहा था अब सुलझ सकता है। वैसे कामों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है।
2: लियो सिंह राशि।
0: आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में किसी से हल्की बहस होने की भी संभावना है। दैट्स व्हाई शांत रहना जरूरी होगा। संतान से किया हुआ वादा पूरा करना पड़ सकता है और बड़ों की ओर से नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत है। घर में पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन से माहौल सकारात्मक माने की पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक रहेगा। आसपास के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि कोई आपके हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। बी केयरफुल।
2: वर्गो कन्या राशि।
0: आज खुशखबरियां आपके दिन को खास बना सकती है। व्यवसाय में किए गए बदलाव अच्छे परिणाम देंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस को नई ऊंचाई देंगे। बॉस के साथ चल रही दूरी खत्म होंगी और संबंध पहले से बेहतर बनेंगे। घर की सजावट या नई चीजों की खरीदारी का मन बनेगा, जिससे घर का माहौल और खूबसूरत बनेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी है। हालांकि भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचें, क्योंकि आपका सख्त निर्णय किसी करीबी को नाराज भी कर सकता है।
2: लिब्रा तुला राशि।
0: आज हर

0: कदम बहुत सोच समझकर उठाने की जरूरत होगी। पुरानी गलतियों से मिली सीख आज आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकती है। बिना मांगे सलाह देने से बचें और अपने आसपास के लोगों पर नजर बनाए रखें। यदि यात्रा पर जाएं तो अपने जरूरी और कीमती सामान को आप खास ध्यान दीजिएगा और धन से जुड़ी कोई परेशानी किसी करीबी व्यक्ति की मदद से हल हो सकती है, जिससे मन हल्का महसूस करेगा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: Alright, आज आप सफलता और प्रगति की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते नजर आएंगे। परिवार के बड़े सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। घर में संपत्ति या बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। मन में चल रही कोई चिंता आपको बेचैन कर सकती है। वैसे संतान की पढ़ाई और भविष्य को लेकर आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जो आगे चलकर उनके लिए फायदेमंद साबित होगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज आप सफलता और प्रगति की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते नजर आएंगे। परिवार के बड़े सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। वैसे आपके लिए ये भी कहा जाता है कि मन में चल रही कोई चिंता आपको बेचैन कर सकती है, तो प्लीज़ अपने मन को समझाएं और सोच समझकर डिसीजंस लीजिएगा।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: सफलता और प्रगति की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते हुए आप नजर आएंगे और यदि कोई यात्रा पर जाना हो तो बस हर डिटेल पर नज़र गड़ाए रखिएगा। आज आपके जो विरोधी हैं आपको कुछ चुनौतियां दे सकती हैं, लेकिन आपने जो ठान लिया है वो आप करेंगे ही ज़रूर। डेफिनेटली आप अपने जो कदम है सोच समझकर बढ़ाएं और परिवार का सपोर्ट तो रहेगा ही।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे। किसी सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी और सम्मान भी बढ़ेगा। बड़ों से किया गया वादा आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। संतान अपने करियर या नौकरी को लेकर आपसे सलाह मांग सकती है।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली आज आपका दिन खुशी, सुकून और हल्के फुल्के पलों से भरा रहेगा। परिवार के साथ बैठकर पुराने मतभेद खत्म करने में आप सफलता आपको मिलेगी। मन के किसी के लिए ईर्ष्या या नेगेटिविटी ना रखें, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी। घूमने फिरने या अपने शौक पूरा करने का आपको मौका मिलेगा और सरकारी योजनाओं से लाभ मिलने के भी संकेत है। विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड ए लवली डे अहेड।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

बस खुशी और गम का मौसम तो बदलता ही रहता है, लेकिन आपका साथ ना छोटे. थैंक यू सो मच. वेरी गुड मॉर्निंग. नमस्कार. प्रेमी लाजी प्रेंदी पापाए से हैं, पति रंजीत और सभी परिवार के नाम. अमृता रामलोल, आप हो कानूत से, और आज आपके कौन है भाई? भैया सुदेश रंगीलाल जो रहते हैं क्लावित, और उनका जन्मदिन है. सुसब परिवार की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. गाना आपके लिए भी है चान आनंद चेंगादू. बेटियां ग्रैंड चिल्ड्रन विल्नवा से हैं पूरे परिवार के नाम. सेंट जूलिया विलेज से है मिस्टर संजय, और रेडियो मस्ती आपके जीवन के साथी है. थैंक यू सो मच. बस बंधु परिवार के नाम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू. 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार.

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Shivaji hai. सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आप सभी धीमान नमस्कार आपको
6: नमस्कार नितुषा सभी सुनने वालों को नमस्कार बजट पेश होने से एक दिन पहले कुगान पापा ने प्रस्ताव दिया है कि उच्च आय वालों पर टैक्स बढ़ाकर ईंधन की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर की कटौती की जाए उनका तर्क है कि मौजूदा कर प्रणाली मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर भारी पड़ रही है हालांकि आलोचकों का सवाल है कि क्या ऐसा करने से मॉरिशस में विदेशी निवेशकों और पेशेवरों का आकर्षण कम हो सकता है या नहीं बजट को लेकर मॉरिशस में बहस छिड़ी है जहां जूनियर मंत्री कुगान पापेन सामाजिक न्याय के लिए उच्च वेतन वालों पर टैक्स बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं वहीं पैट्रिक बेल्को इसका विरोध कर रहे हैं बेल्को का तर्क है कि कर बढ़ाने से ये लोग देश से बाहर जा

0: सकते हैं। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि अमीरों को करों में छूट दी जाए यदि वे उस राशि को सामाजिक आवास परियोजनाओं में निवेश करें। बजट पेश होने से ठीक पहले जनरल वर्कर्स फेडरेशन के वार्ताकार अश्विन गुदे ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ हुई पूर्व बजट चर्चाओं के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना है कि पिछली बजट घोषणाएं विफल रही हैं, इसलिए अब अर्थव्यवस्था को सुधारने और सही दिशा में ले जाने के लिए नए और ठोस कदमों की आवश्यकता है। चीनी उद्योग का लक्ष्य 2029 तक उत्पादन बढ़ाकर 2,50,000 टन करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए MCIA ने 210 मिलियन रुपए के तत्काल निवेश की मांग की है ताकि सेक्टर की उत्पादकता को सही समय पर बढ़ावा दिया जा सके। जलाशयों के गिरते स्तर के कारण वाकाक्यूपी और मुका सहित कई इलाकों में पानी की आपूर्ति सीमित कर दी गई है। अब निवासियों को दिन में केवल 5 से 6 घंटे ही पानी मिल रहा है। इस स्थिति के बीच लोग नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने और भविष्य की संभावित लंबी कटौती के लिए तैयारी करने में जुट गए हैं। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक अंतरिम समझौता हुआ है। इसके तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलेगा, जिसके बदले उसे बिना किसी रोक टोक के तेल निर्यात करने की अनुमति मिलेगी। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। जो बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा था वो उत्तर पश्चिम की ओर दूर होता जा रहा है। अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व और सेंट्रल बातों पर आज सुबह कुछ हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा। फिर भी दोपहर बाद को उत्तर पश्चिम में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात को आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊँची लहरें उठेंगी। आज सुबह और दोपहर बाद को दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: झूठ बोले कौवा कहते हैं। ऐसे मौसम में, सर्दी के मौसम में सुबह सुबह जागना, तभी अच्छी नींद आती है, लेकिन क्या करे, जागना भी पड़ता है। दैट्स लाइफ ना। 6:10, विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। इट्स योर राइज एंड शाइन ऑफ कोर्स थर्सडे मॉर्निंग, एंड 18 जून की सुबह भी हो चुकी है। सो व्हाटएवर यू माइट बी, इट्स योर चोंट, एंड इस नए दिन की शुरुआत तो हो चुकी है। बस प्यार मोहब्बत अपनापन एंड गुड वाइब्स के साथ, गुड म्यूजिक के साथ आगे बढ़ते चले।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: ये अगला गाना आपके नाम चलाते हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग हेमा एंड आज विशाल पूरे परिवार, पारुषी परिधि, पृथ्वी, प्रिया, निशिका, नितिन, विशाल, यानेश एंड रेडियो मस्ती टीम, थैंक यू, लविंग द सिलेक्शन, थैंक यू सो मच माय डियर। और यहाँ पर है कौन हमारे साथ आज विशाल, रेखा, 90s की फैन है आप, और बस अंश के लिए पोंबोजो से आपके लिए भी इक्वली गुड आफ्टर टू वाइफ दूतिका फ्रॉम हबी विष्णु, बेटे योगी, ऋषभ, बेटी श्रेया, शिष्टी, खुशी, बहू क्रिस्टीना, एवियन एंड पूरे परिवार के नाम। सोनम भोला आपके

के लिए, पूरे परिवार के लिए माय डियर। एंड यहाँ पर है कौन, आप कहती हैं एंजल, अविशा, अश्विनी, ब्रो है, भाभी है, मॉम, स्वीट, गर्व, मयांशी एंड आपके पूरे परिवार के लिए। चलिए वंस अगेन 90s की बात चल पड़ी है, देन कुमार सानू एंड साधना सरगम आपके नाम।

आप जैसे साथी हो तो हम छोड़कर कहाँ जाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच कुमार एंड डेविडसन फैमिली, साथ निभाते हुए आप ही हमारे इस महफिल के हम सफर बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग कविता, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको भी। धनेश्वर जी फ्रॉम बॉम्बे, पत्नी सुनीता, साथ में है रेखा, आपके पूरे परिवार के लिए। एंड मीना, ऋषि, तहान, हंसवी, साथ में फ्रॉम दावेदो सनीचर फैमिलीज, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। हैप्पी 40th वेडिंग एनिवर्सरी आपको। आप है कौन यहाँ पर? वल विष्णु और वालिया मां नीला दू ऑफ पेरिस, दिनेश, दियांशी, रवि, रविश, प्रीशा, लवशा, डियर वंस की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। 6:24 नियरली और 6:30 बजे आप सुनवाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन।

लगे हाथ इस प्यारे गीत में आपका नाम भी जोड़ देती है बदवक विदेशी. एनी सॉन्ग आपने कहा तो दिस वन आपके नाम एंड आपके डियर वंस के लिए पूरी परिवार के नाम.

नमस्कार। गुरुवार 18 जून 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बजट पेश होने से एक दिन पहले कुगान महापैर ने प्रस्ताव दिया है कि उच्च आय वालों पर टैक्स बढ़ाकर ईंधन की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा कर प्रणाली मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर भारी पड़ रही है। बजट को लेकर मॉरिशस में बहस छिड़ी है, जहां जूनियर मंत्री कुगान महापैन सामाजिक न्याय के लिए उच्च वेतन वालों पर टैक्स बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं, वहीं पैट्रिक बेल्को इसका विरोध कर रहे हैं। बेल्को का तर्क है कि कर बढ़ाने से ये लोग देश से बाहर जा सकते हैं। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि अमीरों को करों में छूट दी जाए यदि वे उस राशि को सामाजिक आवास परियोजनाओं में निवेश करें। बजट पेश होने से ठीक पहले जनरल वर्कर्स फेडरेशन के वार्ताकार अश्विन गुदे ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ हुई पूर्व बजट चर्चाओं के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना है कि पिछली बजट घोषणाएं विफल रही हैं, इसलिए अब अर्थव्यवस्था को सुधारने और सही दिशा में ले जाने के लिए नए और ठोस कदमों की आवश्यकता है। चीनी उद्योग का लक्ष्य 2029 तक उत्पादन बढ़ाकर 2,50,000 टन करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए MCIA ने 210 मिलियन रुपए के तत्काल निवेश की मांग की है, ताकि सेक्टर की उत्पादकता को सही समय पर बढ़ावा दिया जा सके। जलाशयों के गिरते स्तर के कारण

0: वाक्वा क्यूपी परमुका सहित कई इलाकों में पानी की आपूर्ति सीमित कर दी गई है। अब निवासियों को दिन में केवल 5 से 6 घंटे की पानी मिल रहा है। और विदेश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियार न बनाने और सभी मोर्चों पर युद्ध रोकने पर सहमत हुआ है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोला जाएगा। ये समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। क्या अधिक कमाने वालों को आबादी को राहत देने के लिए अधिक योगदान देना चाहिए? बजट से एक दिन पहले कुगान पापन ने इस बहस को फिर से शुरू कर दिया है। फेसबुक पर अपने एक पोस्ट में उन्होंने ईंधन के हर लीटर पर 5 रुपए की कमी के वित्त पोषण के लिए बहुत अधिक वेतन पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। उनका तर्क सरल है, आज राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा उन करों से आता है जो हर कोई चुकाता है, जैसा कि VAT या पेट्रोल और डीजल पर टैक्स। उनके अनुसार ये प्रणाली परिवारों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर बहुत अधिक बोझ डालती है। इसलिए उनका मानना है कि अधिक आय वाले लोगों से बड़ा योगदान मांगना आवश्यक है। लेकिन ये प्रस्ताव एक और सवाल भी उठाता है, क्या उच्च आय पर कर वृद्धि निवेशकों और पेशेवरों के लिए मॉरिशस के आकर्षण को प्रभावित कर सकती है? इसका जवाब आदरणीय वाले सुमेरा अकबररी के साथ।
1: पेट्रोली सामानों की कीमतों को घटाने के लिए क्या उच्च आमदनी वालों का टैक्स बढ़ाना मुनासिब है? बजट की पेशकश के एक दिन पहले कुगान पगापेन ने एक प्रस्ताव रखा। उनका सुझाव है कि जिन लोगों को बड़ी तनख्वाह मिलती है उनके लिए टैक्स में इजाफा लाना चाहिए। मकसद पेट्रोल और डीजल के हर एक लीटर को 5 रुपए से घटाना। दरअसल ख्याल ये है कि जिन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं उनके योगदान की मांग करना, ताकि पूरे आवाम पर दबाव कम हो। कुगान पगापेन समझाते हैं कि मौजूदा प्रणाली अप्रत्यक्ष टैक्स पर बहुत मबनी है। ये वो टैक्स हैं जो हर कोई चुकाता है, उनका वेतन जितना भी हो। मिसाल के तौर पर पैदावारों और सेवाओं पर वैट की अदायगी। जूनियर मिनिस्टर के मुताबिक ये प्रणाली ना इंसाफी दर्शाती है, क्योंकि ये कम आमदनी और औसतन आमदनी वालों पर भारी पड़ता है। कुगान पगापेन ने मॉरिशस की तुलना दूसरे देशों से की। उनके मुताबिक मॉरिशस एक ऐसा मुल्क है जहाँ बड़ी तनख्वाहों पर टैक्स कम है।
0: क्या मॉरिशस में कर की दर बढ़ाई जानी चाहिए? बजट के लिए सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में जूनियर मिनिस्टर कुगान पगापेन का यही प्रस्ताव है। पिछले सोमवार को ही रेजिस्टेंस से अल्टरनेटिव के सांसद ने इसे राजकोषीय न्याय यानी फिस्कल जस्टिस का नाम देते हुए इस उपाय का बचाव किया। उनके अनुसार ये सामाजिक एकजुटता की कीमत है। हालांकि पैट्रिक बिल्को ने साफ तौर पर इसे नकार दिया है। ओनावो मोरिस के नेता और बुबासे रोसिल नगर पालिका के काउंसिलर का मानना है कि ऐसा निर्णय भारी वेतन पाने वालों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया है कि अमीरों को कम टैक्स देने के बदले सामाजिक आवास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक मेकानिज्म बनाया जाए। उनको सुनते हैं, उनसे बात की प्रणव बिहारी ने।
2: Nous pouvons bien, ça va être gros salaire là, mais aujourd'hui, c'est bandimoun qui apporte.
1: जब तनख्वाह बहुत होती है तो टैक्स भी ज्यादा होता है, लेकिन कर्मचारियों के योगदान के हिसाब से उन्हें बड़ी तनख्वाह मिलती है। लेकिन अगर उनके लिए टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जाए तो ये लोग मॉरिशस को छोड़कर जाएंगे। मॉरिशस में अच्छी काबिलियतों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, बल्कि दूसरे प्रस्ताव हो सकते हैं, जैसे टैक्स की एक बड़ी रकम चुकाने के बजाय कर्मचारी आवास में निवेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रईस लोग कम आमदनी वालों के लिए रियल एस्टेट में निवेश कर सकते
2: हैं।
0: प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा 2026-2027 का बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले श्रमिक संघों ने अपना पक्ष रखा है। जनरल वर्कर्स फेडरेशन के वार्ताकार अश्विन गुदे का कहना है कि जब ट्रेड यूनियन नेताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता खुद सरकार के प्रमुख करें, तो उसके पीछे ठोस कारण थे। उनके अनुसार पिछले बजट में घोषित कई उपाय अपेक्षित परिणाम देने

0: में विफल रही है और आज अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर वापस लाना अत्यंत आवश्यक है। अश्विन गुदे को सुनते हैं जिनसे बात की अंजलि सिरतन फुलचंद ने, विवरण सुमित अकबरेरी का है।
1: Nuchena, belle raison très solide quand nous tient insister que c'est le Premier ministre qui est également le ministre des Finances qui bien préside les consultations prébudgétaires avec 20 syndicats.
2: हम बिल्कुल सही थे ये कहकर कि प्रधान एवं वित्त मंत्री को ही बजट पूर्व सलाह मशवरों का सत्र संचालित करना चाहिए था। पिछले बजट में जिन कदमों का ऐलान किया गया था उन्हें अमल में नहीं लाया गया। आज कर्मचारी जिंदगी की महंगाई की वजह से घुट रहे हैं, कारखाने और उद्योग बंद हो रहे हैं, छोटे व मध्यम उद्योगों को भी मुश्किलें हो रही हैं। अर्थनीति को अच्छी राह पर लाना चाहिए। इसके अलावा जुर्म और ड्रगनोश बढ़ रहे हैं। बजट में नागरिकों की हिफाजत के लिए कदमों का प्रावधान होना चाहिए।
1: Tout ça a pu augmenter, donc l'important qu'à travers le budget, capable d'amener la sérénité, et amène plus de protection pour les citoyens quand on a une situation de la drogue.
0: मॉरिशस लेबर कांग्रेस के अध्यक्ष हनीफ पिरन का मानना है कि सरकार को कीमतों पर नियंत्रण बढ़ाने, रुपए को स्थिर करने के उपाय करने और मॉरिशस वासियों के बोझ को कम करने के लिए सामाजिक सहायता को मजबूत करने की आवश्यकता है। उनको सुनते हैं।
3: Le mouvement syndical, dans son ensemble, il soumet une proposition prébudgétaire au gouvernement.
2: श्रमिक संघों ने सरकार को कुछ प्रस्ताव दिए हैं। हमें लगता है कि जिंदगी की महंगाई इतनी बढ़ गई है और दाम इतने बढ़ गए हैं कि मुर्शनों को मुद्रा स्फीति डर का असर झेलना पड़ रहा है। वक्त आ गया है कि सरकार दामों पर काबू रखे। अवाम का ज्यादातर हिस्सा जिन सामानों का इस्तेमाल करता है उनका फिक्स्ड रेट होना चाहिए। रुपए मुद्रा में स्थिरता लानी जरूरी है।
0: चीनी क्षेत्र की भी इस बजट से अपनी कुछ उम्मीदें हैं, जहां कृषि उद्योग सदन ने इस वर्ष 2,25,000 टन कटनी का अनुमान लगाया है। वहीं मॉरिशस की इंडस्ट्री अथॉरिटी MCIA कम बारिश के बावजूद अधिक आशावादी है। हालांकि मुख्य लक्ष्य 2029 तक 2,50,000 टन उत्पादन तक पहुंचना है। इसके लिए अभी से निवेश शुरू करना होगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए MCIA को कम से कम 210 मिलियन रुपए की आवश्यकता होगी। प्रणव बिहारी, सुमित अकबर अली।
2: बजट 2026-2027 के लिए गन्ना उद्योग के अधिकारियों ने अपनी सबसे बड़ी फिनेंसिंग की मांग कन्वर्शन मशीनों के लिए की है। 1,500 हेक्टेयर जमीनों को कन्वर्ट किया जाएगा, जिनसे 3 सालों में अतिरिक्त 12,000 टन शक्कर का उत्पादन किया जाएगा। MCIA पानी के मसले को भी सुलझाना चाहती है। डॉक्टर सुमन सिरतन के मुताबिक इस पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जा सकता है।
4: Nous faisons une demande dans le budget si nous gagnons un financement pour démarrer un projet pilote. Quand nous parlons
2: हमने बचत की मांग की ताकि हम पायलट बेसिस पर एक परियोजना शुरू कर सकें। समुद्र में जाने से पहले ही इस जल को प्राप्त करके खेतों में इस्तेमाल करेंगे।
4: MCIA
2: की उम्मीद है कि बजट में एक दूसरी रकम का प्रावधान हो जिससे कृषि सेक्टर 20% रिन्यूएबल ऊर्जा का योगदान दे सके।
0: अन्य खबरों में जलाशयों का गिरता स्तर अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज से मऊ वाक्वा जलाशय से आपूर्ति पाने वाले देश के कई क्षेत्रों में पानी वितरण का नया समय लागू कर दिया गया है। कुछ इलाकों में अब पानी दिन में केवल 5 से 6 घंटे ही उपलब्ध है। वाक्वा, क्यूपिप, काट्रोबोन, बोबासे, रोज हिल, मोका, सेंट पियर और कई अन्य इलाके इससे प्रभावित हैं। निवासी इस नई वास्तविकता के साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं? क्या उन्होंने संभावित लंबी अवधि की पाबंदियों का सामना करने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली है? हमारे सहयोगी जेनी यलापा ने कुछ निवासियों की प्रतिक्रियाएं ली। उनको सुनते हैं।
5: Les couper là, mais coupe-moi tout le temps de le couper. Mais alors, moi fini le lever grand matin, moi fini faire tout ce que moi n'a pas faire. L'après-midi, comment de le couler, moi que moi manger.
6: Je me dessine à teint, coupe-moi, mais moi pas trop lien, un problème pour moi. Si nous qu'on j'ai un affaire, nous capable à faire avec ça.
7: Bonne année, vous allez bien. T'inquiète, vous allez bien. Non, mais fini, la vie c'est fini. Après, moi nettoyer la casa.
8: Moi tout seul, moi n'a pas de drôme, moi n'a pas de CEO, moi n'a tout ça là. Moi connais pas arrêter ce paquet. Au final, ramasse-moi de le. On prend toutes mes précautions. Parler de le l'arrêter.

0: le n'arrêtez pas quand même.
1: Bonne ménagère. Surtout dans nous là. Quelle quantité bonheur nous capables de pour ramasser. C'est difficile. Mais mon métier, c'est comment tu restes un petit peu dans la main? Comment tu nous peux rêver dans l'arrière? Et surtout, moi, j'ai mes petits enfants, tout ça là. Mais c'est à l'école. Qui a été bonheur de caler? Comment réserver un dans Maurice? Un est en fuite. Tu es en fuite?
2: Oui, là. Il reste toujours pareil pour moi. Il n'est pas affecté. Pour pas gaspiller. Comme si, du monde là, il a gagné de l'eau. Si pas fait ça pour moi, quand nous prenons manque de l'eau.
3: On a un tank, mon blé, mon tank. Mais comme on disait, mon gagne. Pour les mamans, mon pas aucun problème. Là. Pas qu'on est plus tôt. Le tank là, quand il est vide, il paraît plein. C'est là qu'il y a un problème pour nous. Enfin, c'est elle pour nous faire un peu de soif.
4: भविष्य की चिकित्सा का निर्माण आज से ही हो रहा है. इसी दृष्टिकोण के साथ एगल ग्रुप मंगलवार से दो वैज्ञानिक मंचों की मेजबानी कर रहा है जिनमें कई देशों के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं. समूह के सीईओ डॉक्टर टीनुष्का ईसा सिंह ने बताया कि तुर्की, भारत, पाकिस्तान, नमीबिया, दुबई और जिम्बाब्वे के विशेषज्ञ इन बैठकों में भाग ले रहे हैं. एस्थेटिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ईसा सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ये मंच प्रतिभागियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में हुई नवीनतम प्रगति पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करते हैं. इसका उद्देश्य मॉरिशस को हिंद महासागर के केंद्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उभरते और अभिनव गंतव्य के रूप में स्थापित करना भी है. ये फोरम 21 जून को समाप्त होंगे. और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमरीका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं. दोनों पक्षों का कहना है कि ये समझौता अब प्रभावी है. अमरीकी अधिकारियों के अनुसार इस सौदे में ये शामिल है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और न ही खरीदेगा, सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करेगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलेगा. और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल. जो बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा था वो उत्तर पश्चिम की ओर दूर होता जा रहा है. अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व और सेंट्रल पार्टों पर आज सुबह कुछ हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा. फिर भी दोपहर बाद को उत्तर उत्तर पश्चिम में बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस. रात को आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 15 से 17, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी. आज सुबह और दोपहर बाद को दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है. सूर्योदय 6:44 पर और आज शाम 5:38 पर सूरज ढल जाएगा.

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:46 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। गिबिला एनएचडीसी D11 गांबिलिया में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री मोगानादेन किस्नासामी, जो आजागन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 उनके घर गिबिला एनएचडीसी D11 गांबिलिया से उठाकर गिवे दे ख्योल के शमशान भूमि दी जाएगी। कमीशन टुडे एट 12:30। अली ब्रियन वाकवा में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री सुखबीर रामचंद, जो स्वराज नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11:00 उनकी पत्नी श्रीमती मालिनी रामचंद के घर अली ब्रियन वाकवा से उठाकर अली ब्रियन की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड बॉडीज अमोरेट में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री सूर्यदेव सिबन, जो सूरज नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 उनकी पत्नी

नी श्रीमती रेशमा सिबन के घर रारोद बारे सामुगत से उठाकर तोम्बो लेन में बग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30। लाशा पेलोदों तेलियन संस रारोद बुबासे में 84 साल के 84 years old के श्री ज्ञान प्रकाशन मुनियापिली जो नंदा नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। वे नंबर 14 न गोल्डन वाली रुए आगे स्पोर्ट लुई रहते थे। उनके अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे लाशा पेलोदों तेलियन संस रारोद बुबासे से उठाकर वाली दिपैत की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30। बासे रोड कटरबोन में 75 साल की 75 years old की कुमारी सुबंती रग्नु जोसे क्वाफे नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे शुभ यात्रा मोचवेरी बासे रोड कटरबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। भोला रोड प्लान दिवस में 76 साल की 76 years old की श्रीमती पद्मावती मथुरा पैदाइशी नाम कल्पी और जो दयावती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज 9:15 बजे उनके बेटे संतराज मथुरा के घर भोला रोड प्लान दिवस से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:15। B07 जुल बुशरा अबेकोम्बी सेंट क्वा में 46 साल के 46 years old के श्री अजय नायका जो विकास नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर B07 जुल बुशरा अबेकोम्बी सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भूले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। महात्मा रोड लालमाटी में 63 साल के 64 years old के श्री अशोक सहवन जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके भाई राजेश सहवन के घर महात्मा रोड लालमाटी से उठाकर मिजिन कौन मास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बुलाके लेन मिडलैंड्स में 32 साल के 32 years old के श्री भाविश कन्हैया जो प्रियेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर बुलाकी लेन मिडलैंड से उठाकर रोजबैर की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

इकरार हो सकता है, इनकार भी हो सकता है, बस तकरार ना हो। 6:55 टाइम टू से बाय बाय हमारे बाद मनीष मां के साथ मॉर्निंग बीट। हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।

0: चाहते हैं ना कि सुबह सुबह हम उड़ के बस पहुंच जाए काम पे और कुछ नहीं करना बाकी। वैसे नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो जैसे दिल को चोट पहुंच ही जाती है घर को छोड़ने के बाद, देन जस्ट गो वर्क, जस्ट रिज्यूम एवरीथिंग। आज है थर्सडे 18th of June 2026 को आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ मैं मनीषमा इन योर मॉर्निंग बीट। यहाँ पर मौसम काफ़ी यू नो विंडी है, ऊपर से घने घने बादल छाए हुए हैं, पता नहीं लेकिन दिन में थोड़ा सा ठीक भी हो जाएगा।
1: Morning Beat.
2: RM2 Radio Musti in the mix.
0: ऐसे आज सुबह को ऐसा ही लगा कि यार विंटर आ ही चुकी है, क्या बात है। इतनी ठंड, ऊपर से ऐसे ऐसे म्यूजिक, आपको वैसे टू मेंटेन द वार्मथ इन द मॉर्निंग। हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, 7:05 हुए हैं। Still on time, still on time.

0: चलिए जी, यहाँ पर इन दिस मॉर्निंग शो में आप तो जानते हैं हम ना सरप्राइज करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सरप्राइज बन नहीं पाता। आपकी जो परिवार वाले हैं उनको बताइएगा मत, लेकिन आपको हमें बताना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द नंबर 5499124। अभी बताते हो क्या बताना है, कौन किसका जन्मदिन है आज जो आप जानते हो आप उनसे बेहद प्यार करते हैं और उनको बताना नहीं चाहते लेकिन फिर भी उनको बताना चाहते हैं। यहाँ पर ये सरप्राइज़ है फॉर ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे, आपका नहीं लेकिन उस इंसान का बर्थडे। वैसे अगर आज आपका जन्मदिन है, वेरी गुड, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, आपने सुन लिया, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं सुना और दोज हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ, उनको पता है किसी के अपने का जन्मदिन है एंड यू हैव देयर एड्रेस, देयर नेम एंड देयर फोन नंबर, प्लीज सेंड अस द पर्सन्स बर्थडे एंड रजिस्टर राइट नाउ। यस, हर रोज आपको मिलता है मौका टू पार्टिसिपेट एंड play with us here and win this amazing gift voucher offered by Lolo Hypermarket. जी हाँ, आपको ये बताना है, register करना है अभी। If you know somebody's birthday है आज, तो आप उनका नाम, पता और फोन नंबर हमको भेजिए, और साथ ही आपका फोन नंबर और आपका नाम भी पता तो चले कौन है जिन्होंने मैसेज भेजा है, सरप्राइज किया है अपनों को।
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
2: Radio Musty.

हेलो माही रूप दिरानी गुड एंड हैव एन हीट योर आवाज में. अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक एंड देन आई एम गोना प्ले ऑफ कोर्स बिजुड़िया फॉर यू. वेल द शो कंटिन्यूस हियर ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती.

0: RM2, Radio Musty, in the mix.
1: चलिए जी, अभी के लिए यू हैव गॉट हियर सम रियली नाइस नाइस सॉन्ग्स ट्यूनिंग फॉर यू एंड सिलेक्टेड जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट फॉर दिस मॉर्निंग शो. से यहाँ पर 7:22 तो हो चुके ही है एंड थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे विद अ हैप्पी बर्थडे ऑफ द डे. यस, स्पेशल सरप्राइज. आप जुड़ते रहिए और कीप ऑन रजिस्टरिंग ऑन दिस नंबर 5491294 पर आपके डियर वंस के नंबर और एड्रेस एंड देयर नेम्स ऑल्सो. मुझे कैसे पता चलेगा मैं किसी को फ़ोन कर रही हूँ, मैं नाम पूछ रही हूँ. At least I know the name, na? Yeah. Tell me the name of the person who's celebrating their birthday and their number also. Yeah.

0: हर एक को मौका मिलता है टू सेलिब्रेट देयर हैप्पी डे विद अस हियर ऑन आरएमटू रेडियो. मस्ती अभी के लिए बढ़ते हैं विद अ ब्यूटीफुल सरप्राइज. वैसे वो जानते हैं, वो आरएमटू रेडियो मस्ती को सुन रहे हैं अभी. लेट्स टॉक टू हिम एंड टेल हिम अबाउट व्हाट
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो आरएमटू
2: रेडियो मस्ती.
0: सो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू युधीश. हेलो.
3: नमस्ते. गुड मॉर्निंग.
0: नमस्ते. वैसे यहाँ मैं पूरा मैसेज अभी मैं पढ़ रही हूँ कि आप हिंदी अध्यापक हैं.
3: हाँ.
0: कैसे आप गुरुजी?
3: मैं बहुत स्वस्थ हूँ. आज मेरा जन्मदिन है भगवान की कृपा से.
0: अच्छा जी, तो मैं आपने खुद ही बता दिया आज युधीश गुरुजी का हैप्पी बर्थडे है. सो आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. यहाँ पर किसी अपने ने मैसेज भेजा है एंड उन्होंने कहा कि मैं सुन रही हूँ, उसको फोन करो. वैसे मैंने नाम नहीं, एक्चुअली नाम नहीं बताया उसने और मैं पूछना अच्छा. भी भूल गई. कोई बात नहीं, लेकिन उनको फोन किया. एक लड़की थी जिन्होंने बात की है और उन्होंने आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दी है. एंड अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, कैन यू स्टे ऑन होल्ड. और मैं ना अभी आपसे बात करवाती हूँ ऑन एयर और देखती हूँ कि वो फोन उठा पाएंगी या नहीं. ओके, आई एम ट्राइंग टू गेट हर ऑन एयर एंड सी हु कॉल्ड यू एक्चुअली. एंड ये बस दो मिनट में. वैसे साथ ही साथ आपको कहना चाहती हूँ ढेर सारी शुभकामनाएं. यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है टू यू नो सेलिब्रेट देयर बर्थडे. वैसे आप एक स्पेशल यहाँ पर फोन लग रहा है उसका. ओके. स्पेशल मैसेज आप भेजना चाहते हैं, कोई आप के दिल के बहुत करीब है, तो आप उनके जो नाम है ना दिमाग में आ रहा है, जस्ट थिंक अबाउट देम एंड आई डोंट नो इफ दे आर लिसनिंग टू यू, दे माइट फील गुड आल्सो.
3: सबसे पहले मेरी माताजी, मेरी बहन, मेरी पत्नी और मेरे जो बच्चे, तीन छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मेधांश, उशी और घनीश.
0: ओके जी. ओके, आपकी बीवी का नाम? आपकी बीवी का नाम
3: अनु.
0: अनु. अच्छा, अनु ने नहीं किया, किसी और ने फोन किया एंड दे सेड टू विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. और जो आप करते हो, जो हर रोज आप उठ के काम करते हो, उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं. और जो आपकी योगदान है लोगों की जिंदगी में भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. ओके जी, तो अभी आप काम पर जा रहे हो?
3: जा रहे हो.
0: तो थैंक यू सो मच. अभी आपको बता दो कि आप जो जीते क्या है, एक गिफ्ट वाउचर ऑफर टू बाय लोलो हाइपरमार्केट एंड विद इन टू डेज यू कैन कम एंड कलेक्ट योर वाउचर फ्रॉम लोलो हाइपरमार्केट इटसेल्फ. ओके जी.
3: ओके,
0: सेलिब्रेट योर डे, हैव अ वंडरफुल डे. बहुत शुभ दिन आपको गुरु जी.
3: शुभ दिन आपको भी मनीषमा जी.
0: थैंक यू. बाय बाय, हैप्पी बर्थडे. बाय.
3: ओके.

0: साथ हम सभी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं। वैसे बहुत अच्छा लगता है ना, कोई हमारे जन्मदिन पर एक स्पेशल मैसेज भेजते हैं। कभी कभी हम कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं कोई बात नहीं आज मेरा बर्थडे, मैंने किसी को बताना नहीं चाहती, लेकिन दिल गदगद हो जाता है जब कोई हमको मैसेज भेजता है सेंडिंग अस लॉट्स ऑफ विशेज। और हम हमेशा पसंद ही करते हैं कि हमारे स्पेशल दिन में हमारे चाहने वाले हमारे साथ ही हो। वैसे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर हमारी जो पूरी टीम है आपको विश करना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे ऑल दोज जिनको एक्चुअली उनके फैमिली मेम्बर्स को अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि उनका बर्थडे है। कोई बात नहीं है, हम जैसे हमारे जो दिल के तार हैं ना जुड़ जाते हैं। एंड ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे जिनको अभी तक विश नहीं मिला, आप सभी को भी दिल से हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आर एम टू रेडियो मस्ती।
1: A good beat for your morning show. Morning beat.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Tu ne finis l'école? Tu peux redonner un métier qui est dans l'avenir? Tu as envie d'une qualification qui ouvre la porte au travail ou continuer l'étude supérieure? MIT DCT qui trouve à Eben peut offrir une formation dans le secteur électrique, électronique et ICT. C'est le secteur d'avenir à Maurice et ailleurs. Pour plus de renseignements, téléphone au 404 72 52 ou visite site web mitd.law.mitd.mu.
0: RM2
1: Radio Musty
3: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
4: Sports News
1: Radio Musty in the mix.
5: गुड मॉर्निंग, 7:38 हुए हैं. आप तो जानते हैं यहाँ पर इस टाइम पर स्पेसिफिकली हम ना स्पोर्ट्स अपडेट्स लेकर आते हैं. यहाँ पर अरविंद जी स्टूडियो में हाजिर है. गुड मॉर्निंग टू यू.
6: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. इंग्लैंड के द थ्री लायंस शुरू से ही दहाड़ने लगे हैं, चीर फाड़ने के मूड में है. जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पोर्टुगल फंस गया और अफ्रीकी टीमों का गाना बजाना जारी है. कप्तान हैरी केन का डबल, बेलिंगहम और राशफोर्ड का एक एक गोल. 4-2 से इंग्लैंड ने क्रोएशिया को हराया. फर्स्ट हाफ में स्कोर 2-2 रहा. विनिंग स्टार्ट इंग्लैंड के लिए. जहां अटैक में दम है वही डिफेंस में कमजोरी. फिर भी पहला मैच पहली जीत. वर्ल्ड कप 2026 में शानदार शुरुआत इंग्लैंड के लिए. पोर्टुगल की दाल नहीं गली. कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने पोर्टुगल के साथ वही किया जो केप वर्दे ने स्पेन के साथ किया था. यहां पर मैच ड्रॉ 1-1. कोंगो का पहला गोल है वर्ल्ड कप में. योआओ नेवेज ने पोर्टुगल का गोल स्कोर किया. न्यूकासल यूनाइटेड के स्ट्राइकर योवान विसा ने इक्वलाइज किया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरे मैच में था, कुछ खास नहीं कर पाया. फाइनल स्कोर पोर्टुगल 1, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 1. इंग्लैंड के ग्रुप में गाना की जीत. पनामा के खिलाफ कालेब निरेंकी की इंजुरी टाइम में गोल परफेक्ट होल्डअप रहा. वर्ल्ड कप 2026 में जीत हासिल करने वाली पहली टीम है गाना, पहली अफ्रीकी टीम है गाना. गाना का अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ होगा. और इसी समय ग्रुप के का मैच चल रहा है उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच. कोलंबिया ने खाता खोला था पहला गोल, अभी उज्बेकिस्तान ने इक्वलाइज किया है. मैच जारी है. सो आज ग्रुप स्टेज के फर्स्ट राउंड के मैच पूरे हुए. आज से सभी टीमें अपना दूसरा मैच खेलेंगी. ग्रुप ए में चेक रिपब्लिक वर्सेस साउथ अफ्रीका रात्रि के 8 बजे और ग्रुप बी में 11 बजे स्विट्जरलैंड वर्सेस बोस्निया. कनाडा वर्सेस कतार कल सुबह 2 बजे. फिर कल सुबह 5 बजे मेक्सिको साउथ कोरिया, ये ग्रुप ए वाला मैच है. ग्रुप ए में मेक्सिको और साउथ कोरिया के पास 3-3 अंक हैं. चेक रिपब्लिक और साउथ अफ्रीका दोनों की हार हुई थी. और ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड, कनाडा, कतार, बोस्निया सबके खाते में एक ड्रॉ के साथ 1-1 अंक. ट्रांसफर न्यूज. लिवरपूल स्पेन के इंटरनेशनल विंगर विक्टर मुनोज को साइन करना चाहता है. ओसासुना का खिलाड़ी मुनोज अभी स्पेन के साथ वर्ल्ड कप में है. लिवरपूल उसके कॉन्ट्रैक्ट के 34.6 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग रिलीज क्लोज को ट्रिगर करना कर रहा है. खबर है लिवरपूल की मेडिकल टीम यूएसए में है मुनोज का मेडिकल पूरा करने के लिए. न्यूकासल यूनाइटेड पहले मुनोज के पीछे था पर लगता है लिवरपूल बाजी मार गया. वेस्ट हैम यूनाइटेड के इंटरनेशनल डच स्ट्राइकर समरविल के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटनहम हॉटस्पर रेस में हैं. रियल मैड्रिड ने बेर्नार्डो सिल्वा को साइन कर लिया, फ्री ट्रांसफर है. सिल्वा वहां अपने हमवतन मोरिनो की छत्र छाया में खेलेगा. क्रिकेट. भारतीय टीमों की हैट्रिक. एक तरफ वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारतीय वीमेन टीम ने नेदरलैंड्स को 95 रनों से हराया, 95 रन विन. इंडियन वीमेन टीम की दूसरी जीत है ये. फिर इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को हराया 101 रनों से. और इंडिया की एलीट सीनियर टीम ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हराया, 170 रन विन. इस मैच में टीम इंडिया की ओर से 402 रन बने. गिल और ईशान किशन की ओर से सेंचुरी.

0: टूर डे स्विट्जरलैंड के पहले स्टेज में किम्बर्ले कूदेबियो पिना चौथा स्थान ले पाई। एथलेटिक्स में राशेल क्रुपफेंस्टाइन ने 800 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ओस्ट्रावा के गोल्डन स्पाइक मीटिंग में राशेल चौथे स्थान पे आई और फिर से 800 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, द थ्री लायंस रोरिंग शुरुआत यानी 4-2 की जीत, हैरी केन का डबल और रोनाल्डो कुछ खास नहीं कर पाया। उधर गाना का गाना बजाना शुरू हो गया, देखेंगे क्या होगा आगे। आज सभी ग्रुप के सेकंड राउंड के मैच शुरू हो रहे हैं। Have a wonderful time listening Radio Musty. I'll catch you at 8:30 for the World Cup magazine. Till then, enjoy the music. Bye-bye.
1: Bye-bye. Thank you so much for the updates, Arvind ji.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Mega promo code Quality Deco. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite quartz. Prix cassé, low lavoir. La lumière moderne, prix soc.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: से कुछ देर में हम बढ़ेंगे समाचारों की ओर, यानी कि भोजपुरी समाचार सुन पाएंगे आप. लेकिन उससे पहले हैप्पी बर्थडे फॉर माय मदर इन लॉ रजिया करम, जो रहती है पाया. हैप्पी हैप्पी बर्थडे गुजार टू मिस वादी. गॉड ब्लेस यू. बेस्ट विशेस फ्रॉम कलीग्स टीचर है विमी पूर्णिमा. ओके पूर्णिमा, इट्स नॉट पूर्णिमा, इट्स पूर्णिमा. एंड अनु, प्रीति, जिया, नीला, सुल्ताना, पारूही एंड कृष्णा, रवि, अश्लील, ललिता.

0: HRM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest.
5: अब सुन रहे हैं RM2 Radio Masti को सुबह के 8 बजे हैं।
6: भोजपुरी में समाचार सुने जा बजट पेश हुला से एक दिन आगे कुगान पापन प्रस्ताव दिलन की उच्च आय वाला परी टैक्स बढ़ा के ईंधन की कीमत में 5 रुपया प्रति लीटर के कटौती करा जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा कर प्रणाली मध्यम वर्ग और गरीब परिवार पर भारी पड़ता। बजट के लिए के मॉरिशस में बहस छिड़ल बाटी जहां परी जूनियर मंत्री कुगान पापेन सामाजिक न्याय खातिर उच्च वेतन होला परी टैक्स बढ़ाए के समर्थन करत हवन हुआ पैतृक बिल को एकर विरोध करता। बिल को के तर्क है कि कर बढ़ाए से ई लोग देश से बाहर चल जाएं सा एकर विकल्प के रूप में उ प्रस्ताव देलन कि अमीर के कर से छूट देवल जाए यदि उ लोग राशि के सामाजिक आवास परियोजना में निवेश करें सा। बजट पेश होला से ठीक आगे जनरल वर्कर्स फेडरेशन के वार्ताकार अश्विन गुदे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम संगे होल पूर्व बजट चर्चा के महत्व पर जोर देलन। उकर उबोलेलन कि पिछला बजट घोषणा विफल रहल यही खातिर अब अर्थव्यवस्था के सुधारे के और सही दिशा में ले जाए खातिर नवा और ठोस कदम के आवश्यकता बाटी। चीनी उद्योग के लक्ष्य 2029 ले उत्पादन बढ़ाए के 250,000 टन करे के है। ई लक्ष्य के हासिल करे खातिर एमसीआई 210 मिलियन रुपया के तत्काल निवेश के मांग करता ताकि सेक्टर के उत्पादकता के सही समय पर ही बढ़ावा देवल जा सकी। जलाशय के गिरते स्तर के कारण वाक्वाक्यू पिपौरू मुका सहित कई इलाका में पानी की आपूर्ति सीमित कर देवल गलबा। अब निवासी लोग के दिन में खाली 5 से 6 घंटा ही पानी मिलता। और जिस देश के खबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति युद्ध समाप्त करे खातिर एगो समझौता पर हस्ताक्षर करलन सा। समझौता के तहत ईरान परमाणु हथियार न बनाए के और सब मोर्चा पर युद्ध रोके पर सहमत होल बाटे। कर संगे ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के फेनों से खोलल जाए। ई समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गल बा। देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
0: News on NBC.

0: गर्मी ने ही सर्दी आ गई है यहाँ पर. जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं फॉरम टू रेडियो मस्ती टू ऑल द लिसनर्स. एंड यहाँ पर वेलकम द सेकंड आवर ऑफ कोर्स योर मॉर्निंग बीट. अभी के लिए बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर एंड उसके बाद हम चलाएंगे एक भोजपुरी गाना मीरा मोहन के आवाज में. लाल मोनी आप जुड़े रहिए हमारे साथ.
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: जो बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा था वो उत्तर पश्चिम की ओर दूर होता जा रहा है. अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व और सेंट्रल बातों पर आज सुबह कुछ हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा. फिर भी दोपहर बाद को उत्तर पश्चिम में बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात को आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान सेंट्रल बातों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी. आज सुबह और दोपहर बाद को दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है. सूर्योदय 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:38.

0: RM2, Radio Mastie.
1: Avant tout défi, de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: आठ बजकर अभी 17 मिनट हुए हैं। आप जुड़े हैं आरएम टू रेडियो मासी के साथ। चल लीजिए अभी के लिए बढ़ते हैं विद अ कोट ऑफ द डे। वैसे कहते हैं कि लाइफ डजंट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चॉइस। सो आप चुनिएगा पॉजिटिविटी को, चुनिएगा काइंडनेस को, और चूज टू कीप मूविंग फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट, वन स्टेप एट अ टाइम। धीरे गति से आप पहुंच भी जाओगे जहां आपको पहुंचना ही।

0: और एक जेंटल रिमाइंडर एंड ब्यूटीफुल रिमाइंडर दैट एवरी डे इज अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द लाइफ यू वांट। तो अपनी जिंदगी बनाओ बस अच्छे अच्छे ख्यालों के साथ, जुड़े रहिए आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ।
1: Avant tout défi, tout long shift, tout premier pas qui capable sens tout aujourd'hui, il y a toujours un pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Li pas une simple tasse, li un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant tout défi, tout long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: You're listening to Radio Mastery.

चलिए ये गाना स्वीट हार्ट फॉर यू फ्रॉम द मूवी की इधर ना द वॉइस ऑफ दीप नेगी फॉर यू एंड दिस वन गोज आउट टू वरिणा जो कि अभी ड्राइव कर रही है एंड ऑल दोस जो कि अभी फंसे हुए हैं. इतने टाइम तो नहीं मिलता आपको सेंड अस अ मैसेज, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जुड़े ही हैं आपके साथ. ये जो कनेक्शन है काफी स्पेशल हो जाती है. वैसे बोंको हार्श एंड बी पेशेंट ऑन द रोड.

0: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 टीम्स 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा और मेक्सिको
3: वर्ल्ड कप मैगजीन। वैसे यहाँ पर ब्रेकफास्ट के साथ साथ हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहिएगा। हमारे साथ है अरविंद जी फॉर द वर्ल्ड कप स्पेशल।
4: सुबह सुबह कप ऑफ टी के साथ वर्ल्ड कप। अभी से कुछ मिनट पहले कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया। फर्स्ट हाफ में कोलंबिया के लिए मुनोज का गोल, सेकंड हाफ में डेब्यूटेंट उज्बेकिस्तान ने पहला गोल स्कोर किया वर्ल्ड कप में, नाम है फाइजुलाइव। फिर लुइस डियाज ने कोलंबिया को लीड दिलाई और इंजरी टाइम में कैम्पास का गोल, कोलंबिया 3-1। इंग्लैंड के द थ्री लायंस शुरू से ही ढहारने लगे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पोर्टुगल फंस गया और अफ्रीकी टीमों का गाना बजाना शुरू हो गया। कप्तान हैरी केन का डबल, बेलिंगम और राशफोर्ड का एक एक गोल, 4-2 से इंग्लैंड ने क्रोएशिया को हराया। फर्स्ट हाफ में स्कोर 2-2 था। विनिंग स्टार्ट इंग्लैंड के लिए, जहां अटैक में दम है वही डिफेंस में कमजोरी है। फिर भी पहला मैच पहली जीत वर्ल्ड कप 2026 में, शानदार शुरुआत इंग्लैंड के लिए। पोर्टुगल की दाल नहीं गली, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने पोर्टुगल के साथ वही किया जो केप वर्द ने स्पेन के साथ किया था। यहां मैच ड्रॉ गया 1-1। कोंगो का पहला गोल वर्ल्ड कप में, योआओ नेवेस ने पोर्टुगल का गोल स्कोर किया। न्यूकासल यूनाइटेड के स्ट्राइकर योवान विसा ने इक्वलाइज किया, ऐतिहासिक गोल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच में पूरा मैच खेलने का मौका मिला, पर जो मेसी ने किया, एम्बापे ने किया, हैरी केन ने किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शायद अगले मैच में करना होगा। पोर्टुगल 1-1। इंग्लैंड के ग्रुप में गाना की जीत, पनामा के खिलाफ कालेब येरेंकी का इंजरी टाइम में गोल, परफेक्ट होल्ड अप रहा क्योंकि पनामा ने बहुत अच्छा खेला। वर्ल्ड कप 2026 में जीत हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी टीम है गाना। इस वर्ल्ड कप में गाना का अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ होगा। इसी समय, वैसे अभी कुछ समय पहले जिसे मैंने बताया, उज्बेकिस्तान की हार हुई 3-1 से कोलंबिया के खिलाफ। सो आज ग्रुप स्टेज के फर्स्ट राउंड के मैच पूरे हुए। आज से सभी टीमें अपना दूसरा मैच खेलेंगी। ग्रुप ए में चेक रिपब्लिक वर्सेस साउथ कोरिया रात्रि के 8 बजे और ग्रुप बी में 11 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया से। कनाडा वर्सेस कतार कल सुबह 2 बजे, फिर कल सुबह 5 बजे मेक्सिको साउथ कोरिया, ये ग्रुप ए वाला मैच है। सो ग्रुप ए में मेक्सिको और साउथ कोरिया के पास 3-3 अंक है। चेक रिपब्लिक और साउथ कोरिया दोनों की हार हुई थी। और ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड, कनाडा, कतार, बोस्निया सबके खाते में 1-1 अंक। टूट आ गया फेयर। सो दीज वर द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

ऑल इन टू रेडियो मस्ती। 8:45 हुए हैं। गुड मॉर्निंग, आपके सारे मैसेजेस जो है यहाँ पर है। हेलो, हैव अ वंडरफुल डे, जेरी इज माय नीसेस। अच्छा, वेडिंग एनिवर्सरी सुरोना गनु राव जी और सन इन लॉ है योगेश राव जी ऑफ दैगुची। आई वांट टू विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी फॉर बोथ ऑफ देम। मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस द मैरिज विद लव, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ। प्लीज प्ले ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर मौसी मिमी, मौसा संजय एंड कजिन है श्वेता कोयल फ्रॉम कैटरबॉर्न। थैंक यू।

RM2 रेडियो मस्ती। चलिए जी, यहाँ पर इसी गाने के साथ जाने का समय हो चला है। अगेन आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी गोज आउट टू द कपल विष्णु एंड वल्लियामा नलादो ऑफ पेरिस। ओके, आज वो मना रहे हैं अपनी 40th वेडिंग एनिवर्सरी। 40th वेडिंग एनिवर्सरी, यार एक सीक्रेट बता दो, कैसे मेंटेन करते हो ये खुशहाल जिंदगी? वैसे बेस्ट विशेज, आई थिंक दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज समथिंग फंडामेंटल, और ये जो है हमारी जिंदगी को आगे बढ़ा देती है, एक अच्छा शेप दे देती है रिस्पेक्ट। गुड मॉर्निंग मीठी मीठी चाशनी, आरवी की तरफ से मैसेज आया है। हाय, हैव अ वंडरफुल डे गाइस, अभी की जाने का समय हो चला है। वी टेक केयर, हैव अ वंडरफुल लाइफ आल्सो, एंड काम में जो कुछ भी हो जाएगा आप उसको पॉजिटिविटी के साथ ले दीजिएगा, क्योंकि काम इज पॉट of life, और ये जो negative and positive है, it's a balance of life also. Okay, keep it well.

0: नमस्कार अनुराधा जी, सभी को नमस्कार। 9 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। बजट से एक दिन पहले कुगान बहापन ने ईंधन की कीमतों और कर व्यवस्था पर बहस को फिर से हवा दी है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में प्रस्ताव रखा कि पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 5 रुपये की राहत दी जाए, जिसका वित्त पोषण उच्च आय वालों पर अधिक टैक्स लगाकर किया जाए। उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था में VAT और ईंधन करों का बोझ आम परिवारों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर अधिक पड़ता है। वहीं ओनावो मोरिस के नेता पैट्रिक बिल्कुल ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि इससे उच्च आय वाले लोग देश छोड़ सकते हैं। उनका सुझाव है कि अमीरों को कम टैक्स के बदले सामाजिक आवास में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बजट 2026-2027 से एक दिन पहले श्रमिक संघों ने सरकार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपील की है। GWF के अश्विन गुदे ने कहा कि पिछले बजट के कई उपाय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए, जबकि मॉरिशस लेबर कांग्रेस के हनीफ पिरन ने कीमतों पर नियंत्रण, रुपए की स्थिरता और सामाजिक सहायता बढ़ाने की मांग की। बजट से पहले चीनी क्षेत्र ने भी अपनी उम्मीदें जताई हैं। MCI का लक्ष्य 2029 तक चीनी उत्पादन बढ़ाकर 2.5 लाख टन करना है, जिसके लिए अभी से निवेश जरूरी है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण को कम से कम 210 मिलियन रुपए की आवश्यकता होगी। अन्य खबरों में, जलाशयों में पानी का स्तर घटने के कारण आज से मऊ वाक्वा जलाशय से जुड़े कई इलाकों में नए जल वितरण समय लागू कर दिए गए हैं। वाक्वा क्यूपिप का ट्रोबोन, बुबासें, रोज हिल, मुका और सैंपिया सहित कई इलाकों में अब पानी केवल 5 से 6 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध होगा। विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक समझौता किया है। समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा या खरीदेगा, सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करेगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलेगा। और नए शोध से पता चला है कि बर्ड फ्लू ने ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज के अंटार्कटिक द्वीपों पर हजारों दक्षिणी हाथी सील के बच्चों की जान ले ली है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 9 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Welcome to

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का फिल्मी गुड मॉर्निंग और हम बिल्कुल तैयार आपका साथ निभाने के लिए, गाने चलाने के लिए. राइट, 18th ऑफ जून और ये थर्सडे का दिन, 9:07 और हम बिल्कुल साथ साथ हैं. ऑफिस की डेडलाइन हो या फिर ट्रैफिक की लेफ्ट एंड राइट की लाइन हो, जहाँ पर भी फंसे भाई अपने आप को बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रखिए, यही है जरूरी. राइट, बॉलीवुड के फुल ऑन पैकेज के साथ मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन वहीं पर आती है टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ मस्ती करेंगे साथ में आपके रहेंगे 5491294 पर. चूल्हे मिनो क्या हाल चाल है, थर्सडे का दिन आ गया, बस थोड़ी सी और तैयारी और उसके बाद वीकेंड की बारी. नहीं, इतनी दूर नहीं है लेकिन फिर भी.

0: बसंती, इन बंदों के सामने मत नाचना बसंती।
1: अरे ठीक है यार, नाचे दो, मतलब मौसम ऐसा है, मूड ऐसा और इतनी एनर्जी है तो चलने दो ना।
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Masti.
1: चलिए साहब, नजर डालते हैं आपकी राशियों पर। और 18 जून और थर्सडे का दिन, आज की शुरुआत
3: एरीज मेष राशि।
1: भाई स्पोर्ट्स शूज पहन लो क्योंकि भाग दौड़ी हो सकती है, काफी बिजी हो सकते हो, मानो एक साथ बहुत सारे काम आपका इंतजार कर रहे हो, लेकिन हर काम को जरूरी समझकर खुद पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। समझदारी इसी में होगी कि आप जरूरी कामों को इम्पोर्टेंस दें। संतान की ओर से खुशखबरी दिल को सुकून देगी और चेहरे पर मुस्कान ले आएगी।
3: टॉरस वृषभ राशि,
1: लेजीनेस का नाता छोड़ो और किनारे पर रखकर उसको पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने का दिन है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कई नई जिम्मेदारी हैं जो शुरुआत में थोड़ी सी घबराहट देगी, लेकिन फिर आपके जो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, वो आपका हौसला जरूर बढ़ाएंगे। बोलते समय शब्दों पर पूरा कंट्रोल, क्योंकि छोटी सी बात वो भी कॉन्ट्रोवर्सी विवाद पैदा कर सकती है। नारियल पानी पीती रहे, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में नए काम की शुरुआत के लिए समय काफी अनुकूल है, ठंडा ठंडा कूल है, लेकिन यदि लंबे समय से कोई नया कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अब आगे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के चल रही जो गलत फहमियां हैं वो बातचीत से दूर हो सकती है और रिश्ते में एक बार फिर से मिठास आ सकती है। दूर रहने वाले किसी खास व्यक्ति की याद आपको भावुक इमोशनल कर सकती है, इसलिए मैसेज पहुंचाओ, दूरियां घटाओ।
3: कैंसर कर्क राशि,
1: आज आपका मन दूसरों की मदद और सेवा भाव में लगा रहेगा। जरूरतमंदों की सहायता करके आपको जो शांति मिलेगी उसका तो क्या कहना, अनमोल है। संतान के साथ अच्छा समय बिताने या कहीं घूमने जाने का मौका मिले तो उसको छोड़ना मत।
3: लियो सिंह राशि,
1: लियो जो भी काम है उसको कर दियो, वैसे काम करते करते आपका जो दिन अच्छा बीतेगा, अच्छे परिणाम आपको सामने देखने को मिलेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में किसी से हल्की बहस होने की संभावना, इसलिए शांत रहें, आराम से, धैर्य। संतान से किया गया कोई वादा है वो पूरा करना पड़ सकता है और पिता की ओर से कोई नए जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। आंख बंद करके लोगों पर भरोसा ना करें।
3: वर्गो कन्या राशि,
1: भाई आज की जो खुशखबरियां हैं आपके दिन को और खास बना सकती हैं। बिजनेस में किए गए बदलाव अच्छे परिणाम देंगे और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई। बॉस के साथ चल रही दूरी खत्म होगी और संबंध पहले से बेहतर बनेंगे। हाँ, अगर घर की सजावट के लिए कुछ नई चीजें खरीद रही हैं तो अच्छी बात है, घर का माहौल अच्छा होगा, खूबसूरती आएगी।
3: लिब्रा तुला राशि,
1: हर कदम सोच समझ कर उठाने की जरूरत है। पुरानी गलतियों से मिली सीख आज आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकती है। बिना मांगे सलाह देने से बचें और अपने आसपास के लोगों पर नजर बनाए रखें, नहीं तो कभी कभी होता है कि कोई किसी डायरेक्शन निकल गया और फिर पता नहीं चलता। यदि यात्रा पे जाएं तो अपनी जरूरी और कीमती सामान का खास ध्यान रखें।
3: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज सफलता और प्रगति की दिशा में आप मजबूत कदम आगे बढ़ाएंगे। परिवार के बड़े सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना, रिश्तों को और

0: मजबूत बनाएगा। घर में संपत्ति या बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: भाई आज का दिन समझदारी और इसी हिसाब से फैसले लेने का दिन है। बच्चों के साथ समय बिताने से मन खुश मन प्रसन्न होगा और घर का माहौल भी हल्का फुल्का बना रहेगा। काम को लेकर जो चिंता चल रही थी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। घर के मेहमानों का आना जाना रौनक बढ़ा सकता है, हाँ लेकिन खर्चों पर पूरा पूरा नियंत्रण।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज का दिन सुखद और लाभदायक साबित हो सकता है। परिवार में किसी नए मेहमान के आने से खुशियों का माहौल रहेगा। शेयर मार्केट या निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है और आपके काम की तारीफ आपको नई पहचान मिला सकती है। वही निवेश करते समय दूसरों की बातों में आकर फैसला बिल्कुल ना लें।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: भाई आपकी जो एनर्जी आपकी जो ऊर्जा है वो आपको भरपूर उत्साह देगी और वहीं पर किसी सामाजिक या ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा जिससे आपकी छवि मजबूत होगी, सम्मान बढ़ेगा। माता जी से किया गया कोई वादा है उसको पूरा करने की प्रयास करें और संतान अपने करियर या नौकरी को लेकर आपसे सलाह मांग सकते हैं।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: भाई आज का दिन खुशी सुकून और हल्के फुल्के फूलों से भरा हो सकता है। परिवार के साथ बैठकर पुराने मतभेद खत्म करने में सफलता मिलेगी। मन में किसी के लिए ईर्ष्या या नेगेटिव थॉट्स ना रखें क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव सोच है वो ही आपको आगे बढ़ाएगी। घूमने फिरने या अपने शौक को पूरे करने का मौका मिल सकता है, इसको ना गवाएं, सबको साथ लेके जाएं।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जैसे सुबह सुबह ऐसे ही पूरे दिन थोड़ी थोड़ी भागा दौड़ी, हाँ भागा दौड़ी, कभी ज्यादा कभी थोड़ी, लेकिन प्रोग्रेस करने के चक्कर में निकलो, परफेक्शन करने के चक्कर में नहीं। ऐसे कहते हैं कि मंत्र यही है जिंदगी है कि परफेक्ट होने की चिंता छोड़ी।

ये बेहतर होना, इस पर फोकस कीजिए। बहुत बार हम किसी काम को इसलिए शुरू करते हैं कि हम सोचें कि अब इसमें तो हम अचीवमेंट पा ही लेंगे, लेकिन कभी कभी रिजल्ट अपने हिसाब से नहीं होता। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्मॉल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम क्रिएट मच बिगर रिजल्ट्स देन वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। इसलिए आप ये सोचें कि चाहे फिटनेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या कोई नया स्किल सीखना हो, रोज का 1% यानी कि इंप्रूवमेंट तो है वो। सक्सेस अक्सर उन लोगों को मिलती है जो छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहते हैं, ना कि उनको जो परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करते हैं। तो आज का चैलेंज ये है कि एक छोटा सा स्टेप लीजिए उस काम की तरफ जो आप काफी टाइम से पोस्टपोन कर रहे हैं। टेक इट हेड ऑन और याद रखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है और छोटी छोटी प्रोग्रेस से बड़ी अचीवमेंट। ये आज का मॉर्निंग मंत्र। धमाल का गाना सुना हुआ लगता है नहीं।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: सही सब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर DIY टेक्निक्स हो सकती है, यानी कि आपने खुद घर पे कर लिया और सोच समझ कर। बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक आ गया है, अमेरिकन कंपनी लेकर आ रही है, जिसके पेटेंट चल रहे हैं और उसको एक बेसिक कलर के अंदर लॉन्च किया जाएगा, यानी कि ग्रे कलर के अंदर। अब होगा क्या भाई, लोगों को हर किसी को थोड़ी ग्रे कलर पसंद है, तो क्या करेंगे, कंपनी जो भी ट्रक बनाएगी वो सिर्फ ग्रे कलर में देगी, लेकिन इसके बाद जो कस्टमर्स हैं उनको कार का कलर बदलने के लिए 54 कलर शीट्स मिलेंगी और लगभग 45-50 मेटालिक और डिजाइनर फिनिश के ऑप्शंस। नहीं मतलब क्या, गाड़ी और साथ में शीट्स, कलर शीट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही। कंपनी इन रैप्स को गाड़ी पर लगाकर नहीं देगी, बल्कि कस्टमर्स के लिए एक DIY यानी खुद से करने वाला ये काम होगा। जो कस्टमर्स हैं इसे खुद गाड़ी पर लगा सकते हैं, अपना डिजाइन बना सकते हैं, जो भी कस्टम मेक, क्यों नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, लेकिन मजा आएगा, बच्चों को दे सकते हैं। चलो बेटा, पापा ने एक गाड़ी खरीदी है, आपके लिए एक टॉय आया है, चिपकाओ। वैसे जो प्लास्टिक पैनल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, और पारंपरिक जो शीट मेटल्स होती हैं उसकी जगह इसका यूज करने से गाड़ी का जो खर्चा है वो कम हो गया है, और उसके साथ साथ गाड़ी के साथ ढेर सारी एक्सेसरीज भी ऑफर करेगी, जिन्हें जो मालिक है, जो ओनर है, किसी मैकेनिक की मदद से आसानी से फिट कर सकता है, या खुद से फिटिंग करने के लिए कंपनी के ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर वीडियो और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है। कमाल है ना, यानी कि तामझाम हटाकर सीधा साधा बेसिक इलेक्ट्रिक ट्रक दे रहे हैं और साथ में ग्रे कलर। अब अगर आप चेंज करना है तो यू हैव द शीट पैनल्स, या फिर आपको कुछ एक्सेसरीज ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। वुड यू बी इंटरेस्टेड?
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio.

0: सजाऊंगा,
1: नहीं बताऊंगा नहीं, गानों के साथ प्रोग्राम को सजाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बताऊंगा कि ऑफिस के अंदर एंजाइटी क्या कारण है, कैसे निकल सकते हैं और क्यों होता है।
2: वेलकम टू RM2
3: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
1: क्यों इतनी टेंशन लेते हो, वो भी खामखा

0: यही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना स्ट्रेस लेने का क्या फायदा होता क्या है, किसको होता है ये फायदा?
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: देखिए, हर ऑफिस के अंदर एक अलग वर्क एनवायरनमेंट होता है, परफॉर्मेंस को बेहतर करने का प्रेशर सभी में होता है, लेकिन जब प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो एंजाइटी होने का जोखिम बढ़ जाता है। काम में बढ़ते घंटे, वर्कलोड का बढ़ना, नौकरी की असुरक्षा और घर में काम के बीच जो बैलेंस नहीं कर पाते ना, तो फिर चिड़चिड़ापन, बेचैनी और किसी काम पर फोकस ना कर पाना, ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। जब इंसान लगातार तनाव में रहता है तो शरीर फाइट और फ्लाइट इस प्रोसेस में एक्टिव हो जाता है। दोनों ओर ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं कि लंबे समय तक ये सिचुएशन रहे तो चिंता, बेचैनी, घबराहट या फिर नींद की समस्या इवन, और फोकस तो हट ही जाता है। अब करें तो क्या करें, दिन की शुरुआत अच्छे मूड के साथ करें और अपने मेंटल बैलेंस को कंडीशन करें। ईमेल चेक करने या काम के बारे में सोचने से बचें शुरू में। हाँ, बी वेरी केयरफुल। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो हो सकता है कि एक जगह आप लंबे समय तक ना बैठें। जी, ऑफिस में घंटों स्क्रीन पर देखने या काम करने से बचें। घंटों एक ही जगह पर बैठना फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ पर बुरा असर डालता है। एक साथ ज़्यादा काम ना करें। हाँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे में माइंड तेजी से थक जाता है, इसलिए उसको आराम दें। और अगर पूरी नींद नहीं लेते तो भाई साहब हो गए मुश्किल। एंजाइटी, तनाव, चिंता, इतने सारे बड़े बड़े वर्ड्स और बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। लगातार तनाव आपके हार्मोन्स को आपको डिसबैलेंस कर सकता है, और ऐसे में आपकी जो दिनचर्या है उसमें थोड़े से बदलाव करने से ही फर्क आपको नजर आने लगेगा। अब देखिए, आपके रिश्तों पर असर पड़ रहा है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, तो ऐसी जिंदगी किस काम की? अरे साहब, थोड़ा बैलेंस लाइए, फिट होकर, रिचार्ज होकर फिर निकल जाइए।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: 8th of June, Thursday, then time check exactly 10 a.m. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ संक्षिप्त समाचार के साथ स्टूडियो में आ गए विधिमा, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
6: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। बजट से एक दिन पहले कुगान पहापे ने ईंधन की कीमतों और टैक्स व्यवस्था पर बहस को फिर से हवा दी है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में प्रस्ताव रखा कि पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 5 रुपये की राहत दी जाए, जिसका वित्त पोषण उच्च आय वालों पर अधिक कर लगाकर किया जाए। उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था में VAT और ईंधन करों का बोझ आम परिवारों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर अधिक पड़ता है। वहीं ऑनावो मोहिस के नेता पैट्रिक बेल्को ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि इससे उच्च आय वाले लोग देश छोड़ सकते हैं। उनका सुझाव है कि अमीरों को कम टैक्स के बदले सामाजिक आवास में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बजट 2026-2027 से एक दिन पहले श्रमिक संघों ने सरकार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपील की है। GWF के अश्विन गुदे ने कहा कि पिछले बजट के कई उपाय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए, जबकि मॉरिशस लेबर कांग्रेस के हनीफ पिरन ने कीमतों पर नियंत्रण, रुपए की स्थिरता और सामाजिक सहायता बढ़ाने की मांग की। बजट से पहले चीनी क्षेत्र ने भी अपनी उम्मीदें जताई हैं। MCIA का लक्ष्य 2029 तक चीनी उत्पादन बढ़ाकर 2.5 लाख टन करना है, जिसके लिए अभी से निवेश जरूरी है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण को कम से कम 210 मिलियन रुपए की आवश्यकता होगी। जलाशयों में पानी का स्तर घटने के कारण आज से मौवाक्वा जलाशय से जुड़े कई इलाकों में नए जल वितरण समय लागू कर दिए गए हैं। वाक्वा, क्यूपिप, कैट्रोबोन, बोबासैन, रोजिल, मोका और सैंपिया सहित कई इलाकों में अब पानी केवल 5 से 6 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध होगा। और विदेश में यूक्रेनी ड्रोनों ने इस सप्ताह दूसरी बार मॉस्को की तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जबकि रूस ने कीव पर मिसाइलें दागी। इस बीच राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की शांति समझौते तक पहुंचने के लिए अमेरिका और यूरोप से समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। मॉस्को के मेयर ने बताया कि गुरुवार को मॉस्को ने 5 दर्जन से अधिक ड्रोनों को मार गिराया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रुई पेपिनिया कॉटेज में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयंती रामलोखन, पैदाइशी नाम तुपसी और जो विद्यामो जिस नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर रुई पेपिनिया कॉटेज से उठाकर बेलमो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शिवाला रोड मध ऑस्ट्रेलिया में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वर लाल सिरतन, जो पोल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रानी सिरतन के घर शिवाला रोड मध ऑस्ट्रेलिया से उठाकर बोसोंश की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। पिंक पिजन रोड क्वीन विक्टोरिया में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी देवी रागादू, पैदाइशी नाम तुमादू और जो रागिनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके पति श्री वैतिरिंगम रागादू के घर पिंक पिजन रोड क्वीन विक्टोरिया से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। आया सामी लेन हॉलीवुड

0: नंबर एक वाकवा में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुकंती ने पुल पैदाइशी नाम अर्जुन और जो बेबी लता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके पति श्री विजय नेपल के घर आया सामी लेन हॉलीवुड नंबर एक वाकवा से उठाकर थामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए वक्त भी अपने रफ्तार के साथ धीरे धीरे से लेकिन आगे बढ़ता जा रहा है और जून का महीना भी आधा तो खत्म हो ही गया और बाकी अभी बाकी है। अब थोड़ी सी लोगों को ठंड महसूस हो रही है और आकर कह रहे हैं यार ठीक बाहर तो काफ़ी ठंड है, हम तो सुनने में बंद है लेकिन ये भी जानते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है। अपने साइड के मौसम के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो नंबर है वही मिल जाएगा कहीं आपका फ़ोन भी, बस भेज डालिए क्या हो रहा है आपके साइड पर। खाने पीने की प्लानिंग, घर पर थोड़ी सी चाय की चुस्की, बातें इसकी उसकी और साथ साथ में गानों के सागर में थोड़ी सी डुबकी लगा कर वापस आओ, गोते लगाओ और मज़ा आए तो हमें बताओ 5499124।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए से मौसम का हालचाल पूछ रहे थे कि आपकी साइड पर क्या हलचल हो रही है। तो अभी एक मैसेज आया है, नमस्ते जी, तारा नाम है और कहते हैं कि अपनी नातिन के साथ थोड़ा सा वक्त बिता रहे हैं। ऐसे मौसम में जब मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं तो अब नाना नानी दादा दादी वो अपना जो फ़र्ज़ निभाते हैं और साथ में बच्चों के और करीब आते हैं, वो अद्भुत है, अनमोल है। यह वक्त मिलता है कि एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड क्रिएट करें और इसका पूरा फ़ायदा मिलता है ऐसे ही वक्त में, है ना। उनका ध्यान रखना, उनकी छोटी छोटी बातों कर हंसना मुस्कुराना, इट्स सो ब्यूटीफुल। और कैप्चर एवरी मोमेंट, अगर कोशिश करें उसको कैप्चर करने की फ़ोटो में वीडियो में। वहीं पर गुड मॉर्निंग और कहते हैं बस विष्णु भगवान आपको पीस हैप्पीनेस और गुड हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी दे, आपके लिए खुशियाँ हमेशा। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, एक प्यार से गाना फॉर अ रॉकिंग बर्थडे और ये है सिस्टर सुनंदा का एंड फ्लैग में है। बेस्ट विशेस फ्रॉम सिस्टर्स करुणा है, सुदेवी है, रूबी, बहुत सारा प्यार उनके हस्बैंड सत्यजीत के तरफ से, डॉटर सेजल और खुशी।

0: Radio Musti.
1: Welcome to RM2.
2: Musti Mornings. Radio Musti.
3: आंखें खुलती है सुबह तुमसे होती है.

0: Yes, Bollywood number one music station आपके लिए, thank you so much. और यहाँ पर fashion tip आज लेते हैं एक movie से ही. Inspiration coming from Rocky और रानी की प्रेम कहानी. इस फिल्म ने एक बार फिर प्रूव किया कि कलर्स कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते. रणवीर सिंह के वाइब्रेंट आउटफिट्स और आलिया भट्ट की एलिगेंट साड़ीज ने दिखाया कि स्टाइल का मतलब अपनी पर्सनालिटी को सेलिब्रेट करना है. अगर आपके वार्डरोब में ज्यादातर ब्लैक, व्हाइट, ग्रे शेड्स हैं तो हफ्ते में कम से कम एक दिन एक ब्राइट कलर ऐड कीजिए, चाहे वो शर्ट हो, दुपट्टा हो, टाई हो या हैंडबैग. स्टडीज दिखाती हैं कि कलर्स मूड और कॉन्फिडेंस दोनों पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं. फैशन सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो करने का नाम नहीं बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है. और कभी कभी एक बोल्ड कलर पूरे लुक को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है. तो दोस्तों आज फैशन मंत्र, लाइफ में थोड़ा कलर और वार्डरोब में थोड़ी हिम्मत जरूर रखिए. बिल्कुल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वाली.
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स. RM2
2: रेडियो मस्ती.

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ,
0: आ। अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

0: क्या म्यूजिक थेरेपी होती है ना, गाने ऐसे लगता है जैसे मूड को चेंज करते हैं, मौसम को चेंज करते हैं, और ये कमाल हरदम हमेशा 24/7 7 on 7। कहते हैं प्यासा गाना स्पेशली टू डॉटर पिंकी, और होजबेल में है ब्लेसिंग्स फ्रॉम मम्मी संगीता निशा, और साथ में केविन एंड ईश्वन की तरफ से मिला जी आपको भी अब बिग हेलो, हैप्पी थर्सडे आप सभी को। चलिए एक बात करते हैं किचन हैक्स के बारे में।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: कभी होता है कि आप जब पोटैटोज़ को बॉईल करते हैं और उनको पील करना हो, काफ़ी मुश्किल होती है ना, कैसे करें सोचते रह जाते हैं। लेकिन बॉइलिंग के बाद अगर आप उनको 30 सेकंड के लिए आइसी वाटर में डाल दें तो छिलका आसानी से निकल जाता है।

0: अगर चावल कभी कभी ज्यादा पक जाते हैं पॉट के ऊपर, आप एक सिंपल सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर चावल ज्यादा पक गए हैं तो एक स्लाइस ब्रेड रखकर 5 मिनट के लिए कवर कर दीजिए। ब्रेड जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर वो सोख लेगी और आपको कमाल के खिलखिले आपको राइस के दाने देगी।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: बात करें थोड़ी सी बॉलीवुड की और यहाँ पर सुनील शेट्टी अभी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई खिलाड़ी कुमार की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें तो उनके डीएनए में है उंगली करना, यानी कि थोड़ी सी मस्ती करना, प्रैंक्स करना और ये सिलसिला चलता ही रहता है। कहते वो नेशनल इंस्टिंक्ट है पुलिंग प्रैंक्स और वो चेंज नहीं हुआ है, इसलिए जो भी परफॉर्म करते हैं सीन वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ अलग उसमें लेकर आए। और वहीं पर गोविंदा या सलमान खान को भी बहुत एडमायर किया, कहा कि जैसे गोविंदा उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अलग ही कहानी है, उनके साथ शूटिंग की तो पता लग गया गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अभी काफ़ी बातें कर रहे हैं अबाउट वेलकम टू द जंगल, कहते हैं कि बहुत ही मजा आया इस मूवी में काम करने के लिए। लेकिन इसका मेन मुद्दा एक्शन नहीं था, वो था कि अपने जो को स्टार्स हैं उनके सामने एक स्ट्रेट फेस रखना, क्योंकि वो भी कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसे में चुप कैसे रहें। वहीं पर उनका किरदार, वैसे कहते हैं कि हर कोई सोचता है येड़ा अन्ना वो क्रेजी आदमी है, सब कुछ भूल जाता है, भूला। लेकिन सिचुएशन ये कि अब ऐसे ही हुआ मेरे साथ, नाम भूल जाता हूँ, जगह भूल जाता हूँ, सिचुएशन भूल जाता हूँ और ये पूछता हूँ कि ये कब हुआ था। कहते इसमें एक्शन है, कॉमेडी है, सब कुछ है और ये एक आर्मी की पिक्चर है, आर्मी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसमें एक्शन कुछ ऐसे ही है, वैसे एक्शन कॉमेडी फन तो है लेकिन साथ साथ में मल्टी स्टार है, हर कोई अपनी फैन बेस लेके चल रहा है, तो लगता है जब धुरंधर इतनी हिट हो सकती है या फिर हम बात करें इवन बॉर्डर टू की तो ये क्यों नहीं। मजा आएगा जब हर कोई अपने फैन फॉलोइंग को लेकर इस मूवी का हिस्सा बनेगा। और कहते हैं मल्टी स्टारर फिल्म आजकल यंगस्टर्स करना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि इसमें हम कहीं खो जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ी पिक्चरें एक बड़ा वादा भी लेकर आती हैं, देखते हैं क्या कमाल करती है। ऑल सेट टू एट द थिएटर्स ऑन द 26th of June।

0: आर एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीएस सेल्स लो ग्रानाइट एंड क्वार्ट्ज रिकासे लो लावो ला लुमिएर मॉडर्न प्रिसोक लो

0: Time check, exactly 11 a.m. स्टूडियो में आ गए विद्यमान लेकर संक्षिप्त समाचार, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। पेश है संक्षिप्त समाचार। बजट से एक दिन पहले कुगानपाहा पर ने ईंधन की कीमतों और कर व्यवस्था पर बहस को फिर से हवा दी है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में प्रस्ताव रखा कि पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 5 रुपए की राहत दी जाए, जिसका वित्त पोषण उच्च आय वालों पर अधिक टैक्स लगाकर किया जाए। उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था में VAT और ईंधन करों का बोझ आम परिवारों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर अधिक पड़ता है। वहीं ओनावो मोरिस के नेता पैट्रिक बेल्को ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि इससे उच्च आय वाले लोग देश छोड़ सकते हैं। उनका सुझाव है कि अमीरों को कम कर के बदले सामाजिक आवास में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बजट 2026-2027 एक दिन पहले श्रमिक संघों ने सरकार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपील की है। GWF के अश्विन गुदे ने कहा कि पिछले बजट के कई उपाय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए, जबकि मॉरिशस लेबर कांग्रेस के हनीफ पिरन ने कीमतों पर नियंत्रण, रुपए की स्थिरता और सामाजिक सहायता बढ़ाने की मांग की। जलाशयों में पानी का स्तर घटने के कारण आज से मऊवाकुआ जलाशय से जुड़े कई क्षेत्रों में नए जल वितरण समय लागू कर दिए गए हैं। वाकुआ, क्यूपिप, कट्रोबोन, बुबासें, रुज, हिलमुका और सैंपिया सहित कई इलाकों में अब पानी केवल 5 से 6 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध होगा। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिससे एशियाई शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। वहीं तेल बाजार में भारी गिरावट देखी गई। अमरीकी कच्चा तेल गिरकर $74.70 और ब्रेंट क्रूड गिरकर $77.70 प्रति बैरल पर आ गया है, जो पिछले 3 महीनों का सबसे निचला स्तर है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Yes, that's the kind of music we want to start with. ये है तीसरा घंटा, ladies and gentlemen, 11:07 और हम साथ साथ हैं. 18th of June, Thursday का दिन and beautiful songs. और अभी तो काफी लोग बात कर रहे हैं about cocktail too, and that's exactly what we got for you.
1: RM2 Radio Masti.

जी थोड़ी देर में बात करेंगे शाहिद कपूर के बारे में, जिन्होंने कितनी मुश्किलों के बाद अपना नाम बनाया है, क्या क्या हुआ, चलिए जानेंगे सब कुछ कॉकटेल टू से पहले। बड़ी सागा कमाल कर पाएगी, देखते हैं।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए मीट डाउन की बातें तो हम करते हैं बॉम्बे टॉकीज के अंदर 2 to 4, लेकिन मॉर्निंग में भी थोड़ा बहुत शामिल करें तो हर्ज क्या है। राइट, थोड़ी देर पहले बात करते हैं कॉकटेल 2 के एक्टर शाहिद कपूर के बारे में। उन्होंने कहा कि मुझे वो प्रिविलेज नहीं मिला कि मैं एक स्टार फैमिली से आता हूँ और सीधा मुझे एंट्री मिल गई एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ एक बड़ी मूवी करने के लिए। नो, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से मैंने स्ट्रगल देखी है। एंड स्ट्रगल चाहिए, आज लोग कहते हैं उनकी जो फैशन सेंस है बहुत ही कमाल की है, क्या कमाल के आउटफिट पहनते हैं, लेकिन एक टाइम था जब लोखंड वाला में उनको कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। सो इट वॉज नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रगल, उन्होंने 250 से ज़्यादा ऑडिशन दिए उसके बाद यहाँ पर आए। आज हो सकता है कबीर सिंह के बाद वो कहते हो कि यार ये बंदा तो टिक गया, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। उनके पिताजी, हम सब जानते हैं, पंकज कपूर एक कैरेक्टर एक्टर थे, और मम्मी 15 साल की उम्र से उन्होंने शुरू किया कथक डांस। तो आसान नहीं थी जिंदगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी और इतने सारे मौके नहीं मिले, लेकिन फिर भी ही नेवर गिव अप। कहते हैं आज मेरी फैशन सेंस की बात जरूर होती है, मेरे स्टाइल, मेरे एक्शन, मेरे एक्टिंग स्टाइल के बारे में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आई स्ट्रगल इमोशनली भी, उनके पिताजी और साथ साथ में आपको बताया उनकी दूसरी शादी, सो इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। लेकिन अभी कबीर सिंह उसके सक्सेस के बाद एक बैंकेबल एक्टर जरूर बने, और कॉकटेल 2 ऑल सेट। चलिए अपनी स्ट्रगल को मोटिवेशन में बदलकर एस्टैब्लिश करना अपने आप को एज इंडियन सिनेमाज लीडिंग एक्टर्स, ये बहुत ही मुश्किल रहा। कॉकटेल 2 डायरेक्टेड बाय होमी अज्जानिया, और साथ में आएंगे कुछ और एक्टर्स, जानकी रश्मिका मंदाना, कीर्ति सानन, शाहिद कपूर के साथ, जहां पर गाने काफी कमाल कर रहे हैं, वहीं पर लग रहा है इट्स गोना बी अ कॉकटेल ऑफ रिलेशनशिप्स।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जैसा आपके कुछ मैसेजेस हैं, देखते हैं कि आपके साइड पर क्या हो रहा है। और वहीं पर जब तैयारी होती है ना, तो बीच में खाने पीने की बात हो ही जाती है। और अभी थोड़ी देर में कुछ और किचन हैक्स लेकर मैं शामिल होने वाला हूँ, लगभग आधा घंटा बाकी अपनी मुलाकात। अभी कौन है हमारे साथ? कहते हेलो, मैं हूँ लीना बाई। लीना बाई जी, थैंक यू सो मच मैसेज के लिए। कहते बस नाइस प्रोग्राम, और एक गाना सुनना है मुझे, और मूवी बहुत ही कमाल की है, और वो है

0: धुरंधर, मैं जानता हूँ इसका गाना बहुत पॉपुलर हुआ, एंड दिल पर जो गाना दस्तक दे जाए, कान से सीधा दिल पर उतर जाए, वो है असली गाना चाहिए। आपके लिए चाहूंगा चलाना थोड़ी देर में। थैंक यू और कहते हैं यालेश के लिए who's listening at the moment, और मेरे पर शकीला है, कहते हैं कि कल मेरे चाचा जी की एनिवर्सरी है, कहीं आप गाना तो नहीं आने वाली? 1 2 चा चा चा, ओहो क्या बात है, कुछ तो प्लानिंग हुई होगी। नहीं चलिए, मैं कहता हूँ थैंक यू अपना नंबर शेयर करने के लिए और वहीं पर बताने के लिए कि कल स्पेशल डे है, और वहीं पर यू डोंट नीड टू फॉरगेट मॉर्निंग बीट के अंदर अपना नंबर शेयर करेंगे तो आपको मौका मिलेगा उनको सरप्राइज करने का। ज्योति शादो बनारस से कहती है अगला गाना टुआशनी रेखा सुरेखा एंड मदर फैमिली के लिए, और वहीं पर कहते हैं नलनी ऑलवेज नाइस टू बी लिसनिंग, एंड काम करते करते बीच में थोड़ा सा वक्त मिलता है गाना गाने का तो मजा आ जाता है। चलिए लगता है जो रिश्ता है और थोड़ा गहरा हुआ।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

चलो वक्त हो गया जहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेकर काफ़ी कलीग्स होंगे जो साथ में प्लान करें कि चलो खाना खाते हैं और साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। बट लेट मी टेल यू, दिस रियली वर्क्स लॉट्स। जब आप थोड़ा सा वक्त अपनों के साथ गुजारते हैं, उन लोगों के साथ जो आपकी फिक्र करते हैं या फिर आपको अच्छा लगता है, दीज आर द गुड वाइब्स, और वहीं पर वो जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो डेवलप होने लगते हैं, जैसे म्यूजिक के साथ हमेशा

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए बात करते हैं अब खुश रहने की। एक स्माइल उसकी वाली तो कुछ नहीं होती, लेकिन चेहरे पर उसको लगाना चिपकाना ये आसान नहीं है। फ्री में मिलती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराना आसान नहीं है। क्या बात है। नहीं भाई, जिंदगी में चैलेंजेस सबके पास होते हैं। किसी के पास काम का प्रेशर, किसी के पास फैमिली की जिम्मेदारियां, और किसी के पास अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स। लेकिन रिसर्च बताती है कि जब हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा क्लियरली सोचता है, बेटर डिसीजन लेता है और स्ट्रेस को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल करता है। भाई खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। भाई ऐसा नहीं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपका स्टेट ऑफ माइंड जो कंडीशनिंग है वो कमाल है। सोचिए आप गाड़ी चला रहे हैं, अच्छा चला ही रहे हैं, हेलो नहीं हाथ मत उठाओ, स्टेयरिंग पकड़ो। हाँ तो विंडशील्ड साफ हो तो रास्ता बेहतर दिखता है। प्रॉब्लम्स वहीं रहती है, लेकिन उन्हें नेविगेट करना आसान हो जाता है। खुशी पॉजिटिविटी ये भी कुछ ऐसे ही काम करती हैं, वो सिचुएशन को नहीं बल्कि आपके नजरिए को बदल देती हैं। सो आज का मंत्र, प्रॉब्लम्स को हल्का मत समझो, लेकिन अपनी मुस्कान को भी कमजोर मत होने दो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए गानों से थोड़ा इशारा मिल गया कि अब नेक्स्ट गोना बी रेट्रो रिदम, जहां पर गाने कुछ चलने वाले हैं पुराने, कुछ अलग साइड में 90s के भी, और फिर मजा आएगा जब दोनों की कॉम्बिनेशन पहुंचेगी आप तक हवा में उड़ते उड़ते इंटरनेट के जरिए, रेडियो के जरिए आप हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच नेशनल इंटरनेशनल हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, थैंक यू। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे इजाजत और कल एक बार फिर से मिलने का मौका मिलेगा 7 to 9 के बीच में, एंड ऑफ कोर्स कीप ऑन ट्यूनिंग एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Exactly 12 p.m. स्टूडियो में आगे विद्यमान उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी सुनने वालों को नमस्कार। कंपटीशन कमीशन मॉरिशस में मुर्गी पालन क्षेत्र का बाजार अध्ययन शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की जांच करना है, जिसमें चिकन और अंडे का उत्पादन और विपणन शामिल हैं। कमीशन के अनुसार पोल्ट्री उद्योग मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है। चिकन देश में सबसे अधिक खपत वाला मांस बना हुआ है और ये आबादी के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में अब एक दिन से भी कम का समय बचा है। बजट 2026-2027 को एक रिकवरी बजट के रूप में देखा जा रहा है। ये एक ऐसे आर्थिक परिवेश में पेश किया जा रहा है जो अभी भी नाजुक है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संकेत राहत की उम्मीद जगाते हैं, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से। मॉरिशस में सबकी निगाहें सबसे कमजोर वर्ग पर भी टिकी हैं। बजट 2026-2027 की प्रस्तुति से पहले बुजुर्गों की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे समझते हैं कि मॉरिशस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति अभी भी कठिन है। वहीं अन्य लोग मुख्य रूप से जीवन यापन की बढ़ती लागत का जिक्र करते हैं। महंगाई की मार झेल रहे पेंशन भोगियों की मुख्य प्राथमिकता दैनिक जीवन में राहत और अपनी खरीद शक्ति को बढ़ाना है। बजट से एक दिन पहले कुगान पहापे ने ईंधन की कीमतों और टैक्स व्यवस्था पर बहस को फिर से हवा दी है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में प्रस्ताव रखा कि पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 5 रुपए की राहत दी जाए, जिसका वित्त पोषण उच्च आय वालों पर अधिक टैक्स लगाकर किया जाए। वहीं ओनावो मोरिस के नेता पैट्रिक बिल्को ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि इससे उच्च आय वाले लोग देश छोड़ सकते हैं। उनका सुझाव है कि अमीरों को कम कर के बदले सामाजिक आवास में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 14 सूत्रीय ज्ञापन के हिस्से के रूप में दोनों पक्ष अगले 60 दिनों के भीतर एक अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए आगे की बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समझौते में कहा गया है कि इस आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन की योजना और ईरान पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त करना शामिल है। और लॉस एंजल्स के बॉयल हाइट्स में स्थित एक बड़ी कोल्ड स्टोरेज की 16 पैनल वाली छत में बुधवार को भीषण आग लग गई। जहरीली धुएं और अमोनिया रिसाव के खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई। दमकल कर्मियों और विशेषज्ञों की टीम आग बुझाने में काम में जुटी रही, जबकि घटना की जाँच जारी है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। पिंक पिजन रोड क्वीन विक्टोरिया में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी देवी रागादू, पैदाइशी नाम तुमादू और जो रागिनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके पति श्रीवायती लिंगम रागादू के घर पिंक पिजन रोड क्वीन विक्टोरिया से उठाकर बुशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। आयासामी लेन हॉलीवुड नंबर 1 वाक्वामी 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुकंती नेपल, पैदाइशी नाम अर्जुन और जो बेबी लता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके पति श्री विजय नेपल के घर आयासा मिले इन हॉलीवुड नंबर 1 वाक्वा से उठाकर तमाम मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv.
3: Retro Rhythm.
4: RM2. Radio Musty.

0: Retro Rhythm.
1: What a beautiful song to start this beautiful show. That's your retro rhythm. जी हाँ दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में 12:08 हो चुके हैं. Wishing all of you a very good evening. नमस्कार जी और गिनिशा का प्रणाम. कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे listeners? All set ना इस खूबसूरत सी सफर में हमारा हम सफर बनने के लिए. जी हाँ, और आज है Thursday 18 of June 2026. To all those जो आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन, wishing you a very happy birthday. और the entire show goes out to you. आइडिया 5499-1294 पर आप अपने दिल की बात लिख के हमें भेज सकते हो 5499-1294. बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके डेडिकेशंस का. और साथ में आपको हम याद दिला दे कि ये जो खूबसूरत सा शो हम लेकर आए हैं खासकर आपके लिए, हम चाहते हैं कि आप आराम से बैठ जाइए, इन खूबसूरत पुराने गीतों में खो जाइए. और साथ में अगर लंच ले रहे हो अपनों के साथ, बोन अपेटिट टू यू.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: सुनो और गौर से सुनो. अरे पहले तालियां तो बजाओ. आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात.

0: रेट्रो रिदम।
1: ये थे हमारे प्यारे किशोर दा की आवाज में मेरी भीगी भीगी सी बिल्कुल जी, और ये एक खूबसूरत सा गाना हमने लिया और पेश किया आप लोगों के लिए, ताकि आपका दिल, आपके दिलों को सुकून मिल जाए। बिल्कुल, जब भी आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज़ में कोई भी गाना सुनते हो, जैसे ये गाना शायद कोई आपका फेवरेट मेमोरीज उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑफकोर्स कुछ यादें जब ताज़े हो जाते हैं तो इंसान का मन काफ़ी खुशी हो जाता है। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप गॉट योर डेडिकेशंस, आपके प्यारे प्यारे डेडिकेशंस जो आपने भेजे हैं 154991294 पर, साथ में चेक कर लेते हैं। एंड राजा जी जो है मिलानो इटली से, वो बोलते हैं गाना हो जाए हमारी प्यारी बेटी नर्वेशा के लिए, और नर्वेशा का आज बर्थडे है, सो विशिंग यू हैप्पी बर्थडे।

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे नर्वेशा, ब्यूटीफुल लेयर गर्ल। सो लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू, की पापा राजा की तरफ से फ्रॉम मिलानो इटली एंड ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग। आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। तो चलिए, वी हैव द नेक्स्ट वन जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे क्रिश्ती अगेन फ्रॉम रिविया दे क्रियोल। कैसे हो आप? हस्बैंड विक्रम के लिए और बच्चों के लिए, कौशिक एंड कौशल के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, और आप उनको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई नो दिस फीलिंग, जब बच्चे बाहर होते हैं उनको हर वक्त हम मिस करते हैं, और इतना तो हम कह सकते हैं कि शुक्रगुजार होना चाहिए आज के ज़माने का, जो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुके हैं कि बच्चों से हम रोज़ बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे रोज़ उनको देख सकते हैं। बस याद करो वो पुराने दिन, पुराना ज़माना, जब फ़ोन पहले चिट्ठी के ज़रिए कम्युनिकेशन करते थे, और उसके बाद जो ISDSTD फ़ोन होते थे, इंटरनेशनल फ़ोन कॉल्स करते थे, फिर एक्सपेंसिव भी बहुत था कि रोज़ तो बात नहीं हो पाती थी, लेकिन अभी इंटरनेट के ज़रिए रोज़ उनसे बातें होती हैं। तो आप बस बिल्कुल चिंता ना कीजिए। और अगला गाना अब्दुल जी एंड सहरा बानू जी के लिए, जो इस वक्त काम पे हैं, काम कर रहे हैं। सो कुआज दी यू, आप हमें सुन रहे हो, आपको भी हमारा प्यार भरा सलाम। एंड चलिए जी, ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे रूमीला के लिए, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सो हैप्पी बर्थडे टू यू ब्यूटीफुल एंड बेस्ट विशेस उनके पति की तरफ से, प्रोविडेंस के रहने वाले हैं बेटा अर्जुन एंड बेटी नरवीना की तरफ से, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू। तो चलिए जी, अभी फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, और मैजिकल नंबर तो आपको याद ही है, 5499-1294 पर भेजेगा जरूर अपने डेडिकेशंस।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: रेट्रो रिदम
1: RM2

0: रेट्रो रिदम। 12:37 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्तों, पुरानी यादों की महफिल वैसे ही सज चुकी हैं और दिल के तार फिर से चिरने का वक्त तो आ ही गया है इन खूबसूरत नगमों के ज़रिए, जहाँ हर सुर में मोहब्बत है, हर लफ्ज़ में एहसास होती हैं और आपका रेट्रो रिदम में जहाँ पुराने बॉलीवुड के नगमे आज भी दिलों पर राज करते हैं, हम तो हमेशा म्यूज़िक लवर्स का स्वागत करते हैं। ऐसे मोहब्बत के उस दौर की बात ही कुछ और थी, जब एक मुस्कुराहट में पूरी कहानी छुपी होती थी। आइए उसी एहसास को फिर से महसूस करते हैं एक हसीन खूबसूरत 90s के गाने के साथ, जो है कुमार सानू की आवाज़ में, खासकर आपके लिए सर मूवी से लिया गया।
1: RM2 Radio Masti।

रेट्रो रिदम। क्या आपने सुना बरसात की धुन? नहीं सुनी, कोई बात नहीं, हमने तो प्यार की सुना दिया आप सभी लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि दिल से आपको अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत गिने चुने नगमे जो खासकर आप लोगों के लिए हम पेश कर रहे हैं। टाइम बीटा चला जा रहा है, 12:45 हो चुके हैं। तो चलिए जी, वक्त तो वैसे ही बदलता रहता है, और वक्त बदलता गया, ज़माना जो है बदलते गए, और लेकिन कुछ गीत है ना जो हर दौर में दिल को छू जाते हैं। ऐसे ही एक अनमोल नगमे के साथ चलिए सफ़र जारी रखते हैं, लेकिन से पहले हम आपके डेडिकेशन जरूर चेक करना चाहेंगे। हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स ना, हमेशा आप लोग भेजते रहते अपने दिल की बात। तो चलिए जी, ये अगला गाना जो है सभी दोस्तों के लिए जो प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स कमिंग फ्रॉम कल्याणी कौतूहल से, और खासकर ब्यूटीफुल लेडी, दैट्स फॉर यू माय डियर। एंड ईशिता की शादी है इस संडे को, सो ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, शादी की ये मुबारकबाद हम जरूर देना चाहेंगे मेरी जान। एंड विशिंग यू हैप्पी मैरिड लाइफ पॉजिटिव फ्लैग से है, और वेडिंग का कोई गाना चला दीजिए। चलिए थोड़ी देर में ज़रूर प्ले करूँगी एक ऐसा गाना जो खासकर आपके लिए है मेरी जान, जो वैसे अगर आपकी शादी है, सिर्फ आपकी नहीं, आई गेस कि अभी तो शादी का सीज़न चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों की शादी चल रही है, तो उनके लिए भी हम एक गाना ज़रूर चलाएंगे। एंड वी डू हैव सरोजिनी नायगी उजल नायडू आपाडू फैमिलीज की तरफ से ये अगला गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, बिल्कुल जी, स्पेशली पूरे फैमिली के लिए। एंड वी डू हैव सो मेनी पीपल वर्किंग राइट नाउ, सो हम ज़रूर आपको भी याद करना चाहेंगे, आप काम कर रहे हो, सो कुराश टू यू। और चलिए, जैसे कि हमने कहा है कि आपके डेडिकेशन आर द मोस्ट वेलकम, सेंड इट टू मी ऑन 5499-1294 पर। सीता गीता बलोहम जी फ्रॉम शत्रु बनारस, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू। एंड चंद्रानी वो बोलती हैं, प्रीति सभी चुलन हरक परिवार के लिए फ्रॉम आंस जों से, सिलसिला है प्यार का गीत। चलिए थोड़ी देर में जरूर, एंड आई जस्ट वांट टू विश हैप्पी बर्थडे टू यू जी विन, उनकी वाइफ हंसिनी की तरफ से, पापा विनोद, मामा नीला, लिटिल नायरा, बालगोविंद फैमिली फ्रॉम ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट से। तो चलिए, शादी का सीजन चल रहा है, तो शादी का एक गाना आप सुनना पसंद करोगे तो क्यों नहीं, ये अगला गाना जो है आपके लिए मेरी जान, यानी कि ईशिता के लिए जिनकी शादी होने वाली है इस संडे को।

0: चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में इट्स एग्जैक्टली 1 PM आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ नमस्कार
1: नमस्कार गिनिशा सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन स्थिति को पूरी तरह सामान्य पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े इस झटके का प्रभाव जल्द खत्म नहीं होगा इस बीच मॉरिशस की कंपनियां अभी भी फ्रेट लागत में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं एक कंटेनर के लिए भाड़ा शुल्क $1,100 तक पहुंच गया है कृषि उद्योग में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते इस क्षेत्र के साझेदारों द्वारा विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के लिए करीब 1,000 मांगें की जा चुकी हैं विदेशी कामगारों की भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी नियामक ढांचे में जल्द होने वाले संशोधन का इंतजार कर रही है इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी श्रमिकों के रोजगार के दौरान कार्य परिस्थितियों और मॉरिशस के श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन किया जाए फुटबॉल की दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए आज 3 मैच खेले जा चुके हैं इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच स्कोर रहा 4-2 गाना ने पनामा को 1-0 से हराया जबकि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की टीम आपस में टकराई और स्कोर रहा कोलंबिया 3 उज्बेकिस्तान 1 आज रात 8 बजे चेकिया खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ और रात 11 बजे स्विट्जरलैंड टकराएगा बोस्निया के खिलाफ आपको याद दिला दें कि ये सभी मैच MBC प्ले पर आप देख पाएंगे विदेश में यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है इसके चलते सुरक्षा कारणों से सभी बड़े हवाई अड्डों की सभी उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे रूसी हमलों का जवाब बताया उन्होंने तेल रिफाइनरी के साथ साथ कई अन्य ठिकानों पर हमलों की पुष्टि की है ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार शोक समाचार सुनिए पोंकलविल सावान रोड नुवेल फ्रांस में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री दुष्यंत सुकन जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे कुणाल कुमार सुकन के मकान पोंकलविल सावान रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजीन नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है
2: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: Retro Rhythm.
4: RM2.

Retro Rhythm. Welcome back in the second hour of this beautiful show. That's your Retro Rhythm on RMT Radio. मस्ते जी हाँ दोस्तों, 1:09 हो चुके हैं. सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. तो चलिए, खूबसूरत पुराने गानों का ये सिलसिला चल रहा है आपके और हमारे बीच में, और उम्मीद करते हैं कि दिल से आप एंजॉय कर रहे हो. वैसे यारों के पिटारे में ज़रूर कोई गीत ऐसा होगा जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता है. हमें बताइए अपना पसंदीदा रेट्रो गाना और शायद अगला सुर आपकी फरमाइश का हो, किसको पता. वैसे कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं महसूस किए जाते हैं. कुछ दर्द लफ्जों में नहीं लेकिन सुरों में बयां हो जाते हैं. तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही दिल को छू लेने वाला गीत जो बस हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. हम तो बस चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ढेर सारा प्यार हम बरसाएं, तभी तो लेकर आए हैं लॉट्स ऑफ लव.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: rhythm.
1: तो चलिए जी, टाइम बीता चला जा रहा है, 1:21 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच जी साथ निभाने के लिए। आई नो इट्स जस्ट थर्सडे, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में है ना कि कब फ्राइडे आएगा, एंड देन वी गोना हिट द वीकेंड। ऑफ कोर्स इट्स कमिंग, इट्स ऑन इट्स वे। आप बस ज्यादा सोचेगा मत, बस अगर काम पे हो सो आराम से काम करते रहना, और अच्छे अच्छे गाने तो वैसे ही हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इन रेट्रो रिदम। एंड 5491294 पर आई हैव गॉट योर डेडिकेशंस, साथ में लेट्स चेक इट आउट। एंड अमरीका पुरुषराम पोर्टलिस से साथ दे रही है उनके परिवार वालों के लिए। जीने को तो जीते हैं सभी, हम भी तो जी रहे हैं, मेरी जान कोई बात नहीं। सो ये कोशिश करेंगे टू प्ले दैट फॉर यू। ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। विश्वानी डुमन वाकुआ से अभी बढ़िया बढ़िया गाने सुन रहे हो, एक गीत है और आप सुनना पसंद करेंगे, नीली नीला घटा या ये गीत। आपकी बहन इंदिरा, शारदा और सहेली जो हैं नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता कजाधर के लिए जो साथ दे रहे हैं। हाई ब्यूटिफुल लेडीज, ऑल ब्यूटिफुल लेडीज जो साथ दे रही है। अगला गाना आपके नाम भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे, गिनी मेरी जान। ऐसे ही गाना चलाना और मैं, अच्छा आप डांस करते रहोगे, दैट्स अ स्वीट ब्यूटीफुल इमोजी कविता जी। पहले तो मैंने सोचा कि ये क्या है, ऐसे गाने में चलाऊंगी तो क्या होगा। ये जो इमोजी आपने भेजा है ना, तो हमें पता चल गया कि आपका मन प्रसन्न हो गया, एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छी बात है, एक्चुअली यही तो हमारी कोशिश करते हैं, हम करते रहते हैं जितने भी आर्जेस यहाँ पे हम आते हैं, कुछ ऐसे गिने चुने नगमों के साथ, सो दैट वी कैन रियली ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस एंड मेक यू हैप्पी। अमिता मोहबियर जी एंजॉइंग हॉलीडेज इन नेदरलैंड्स, आई लव यू ऑल, स्पेशली योर बेस्ट सॉन्ग्स गिनीशा जी, थैंक यू सो मच। Enjoy your holidays and a big hi goes to the entire family there, दोस्तों के लिए भी। ये दुनिया ये महफिल आपके किसी काम की नहीं है, ओ हो अमर क्या बात है। रीना कविता सुनीता from a grande retraite, so thank you so much जी साथ निभाने के लिए। किसी ने लिखा है lovely weather, तो चलिए ये मौसम वाकई में आज बहुत सुहाना है, कल तो काफी बारिश हो रही थी। So lovely show Darren Shweta Ravish Prishala Visha Padu families from Rochnoy, and I know so many people from Rochnoy हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं, साथ देते रहते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। करिश्मा द ब्यूटीफुल करिश्मा, कैसे हो आप, ये अगला गाना आपके लिए। एंड द बेस्ट विशेस टू आयशा तेजल रायना तनवीर रायान वनीशा विरुहा वनीशा तराश करुणा एंड कमला गंगा बिसुन फ्रॉम कैट्रबोन। एंड जिंदगी एक सफर है सुहाना, बिल्कुल जी, यहाँ कल क्या हो किसने जाना और अगला गाना क्या है कौन जानता है, सिर्फ मैं, तो चलिए सुन लेते हैं साथ में।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: तो चलिए जी लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, मोहम्मद रफी जी और किशोर दा की आवाज़ों में सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और ये गाना स्पेशली मिस्टर फिरोज वुजिया के लिए जो साथ दे रहे हैं ऑन आवर टू रेडियो मस्ती।

तो चलिए जी, टाइम बीता चला जा रहा है, 1:36 हो चुके हैं और फिलहाल के लिए हम एक खूबसूरत सा गाना पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं तो हर मोड़ पर, जी हाँ, मुकेश दा की आवाज़ में, खासकर उनके सारे फैंस के नाम।

0: रेट्रो रिदम।
1: खूबसूरत गाने तराने लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए। ये जो खूबसूरत सा सफ़र है, जो आप लोग हमारे हम सफ़र बने हैं, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे लिसनर्स का, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारा साथ दे रहे हैं। जी हाँ, किनेश ऑन द माइक साथ दे रही हूँ मैं। और बिल्कुल जी, पुराने गाने जो हैं जब दिल को छू जाते हैं तो बहुत सारी आपकी खूबसूरत यादें को हम ताज़ा कर लेते हैं। और फिलहाल के लिए लेट्स मूव ऑन टू योर डेडिकेशन ऑन 5491294 पर। और शाम मिस्टर श्याम देवी चंद जी बोलते हैं घर पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गर्मा गर्म इलायची वाली चाय भी पी रहे हो। मतलब कि ये गलत बात है ना, हम यहाँ पे बैठे बैठे बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आप चाय पी रहे हो। कोई और मैसेज भेजेंगे और बोलेंगे कि हम तो खैबानंद खा रहे हैं, हम तो घाटोपानंद खा रहे हैं।

0: गलत बात है, ये हमारे जो पेट का इमोशंस है ना उसके साथ मत खेला करो। चलिए जी आप एंजॉय कर लीजिए अपने इलायची वाली चाय को, हम तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे अपनी गर्म गर्म कॉफी पीने के लिए। ये अगला गाना जो है ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, जो रायान है, रायना है, तनवीर तेजल, आयशा निश्ता, वनीशा वर्षा फ्रॉम दाडी कमला, और आप रहते हो कैटोबोन में, आपके डूबा परिवार के लिए भी ये अगला गाना आप डेडिकेट करना चाहते हो। तो चलिए जी, I have the next one for you. I'm so sad today. My sister is not well. She's ill and clinic में है. God bless and yes. हम भी दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बहन जो है हमारी प्यारी गायत्री जी वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और फिलहाल के लिए चलिए जी बढ़ते अगले गाने की ओर। हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं, एंड इफ यू आर ड्राइविंग हम तो कहेंगे ड्राइव केयरफुली, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, क्योंकि आई हैव गॉट यू द बेस्ट ब्यूटीफुल एंड लवली सॉन्ग जो स्पेशली हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं इन दिस ब्यूटीफुल शो। और उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आप दिल से enjoy kar rahe ho, and here we go, this one straight away from my heart to you.
1: Ye gulshan phool kaliyan bahar wadiyan ye mausam khet haryali pahad barf ye kainat kuch bhi nahi garan mein wo nahi
2: wo hai kaun
3: kaptan sahab us ladki ka koi naam to hoga
1: naam

0: रेडियो मस्ती रेट्रो रिदम।
1: तो चलिए जी, 1:55 हो चुके हैं। इट्स टाइम फॉर गणेश चतुर्थी से गुड बाय टू यू। लेकिन आने वाली है परी, थोड़ी देर में आपका साथ देने के लिए विद सम लवली हॉट एंड स्पाइसी बॉलीवुड गॉसिप्स एंड द लेटेस्ट बॉलीवुड के गानों। एंड जी हाँ, हम फिर मिलेंगे आपसे कल, यानी कि कल है फ्राइडे 12 बजे से 2 और 4 से 7। सो सिट यू नेट, स्टे कनेक्टेड ऑलवेज ऑन योर नंबर 1 रेडियो स्टेशन एंड हैव अ लवली टाइम ऑलवेज बाय एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
5: Time check 2 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्थिति को पूरी तरह सामान्य पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े इस झटके का प्रभाव जल्द खत्म नहीं होगा। इस बीच मॉरिशस की कंपनियां अब भी फ्रेट लागत में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं। एक कंटेनर के लिए भाड़ा शुल्क $1,100 तक बढ़ गया है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव और इंश्योरेंस लागत भी व्यापारियों पर ज्यादा बोझ डाल रहे हैं।

0: में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते क्षेत्र के साझेदारों द्वारा विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के लिए करीब 1000 मांगे की जा चुकी हैं। विदेशी कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी नियामक ढांचे में जल्द होने वाले संशोधन का इंतजार कर रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी श्रमिकों के रोजगार के दौरान कार्य परिस्थितियों और मॉरिशस के श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन किया जाए। पहले चरण में भारत से 300 श्रमिकों के आने की उम्मीद है। फुटबॉल की दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए आज 3 मैच खेले जा चुके हैं। इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच स्कोर रहा 4-2। गाना ने पनामा को 1-0 से हराया, जबकि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की टीम आपस में टकराई और स्कोर रहा कोलंबिया 3 और उज्बेकिस्तान 1। आज रात 8 बजे चेकिया खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ और रात 11 बजे स्विट्जरलैंड टकराएगा बोस्निया के साथ। आपको याद दिला दें कि ये सभी मैच एमबीसी प्ले पर आप देख सकते हैं। विदेश खबरों में, यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसके चलते सुरक्षा कारणों से सभी बड़े हवाई अड्डों की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे रूसी हमलों का जवाब बताया। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। मोंडेजियावाक्वा में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रसेन गणपत जो पुलिस केटरिंग अफसर एसएमएफ में थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर ढाई बजे उनके मकान मोंडेजियावाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा के क्रिमेटोरियम ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies.
3: Radio Musti.

सो वेल फ्रेंड्स, 2:07 थर्सडे आफ्टरनून एंड लेकर आए हैं आपके लिए बी राउंड की गर्मा गर्म लेटेस्ट अपडेट्स। मंडे टू फ्राइडे होता है आपके लिए बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM। चलिए सो आप भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सो योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर होगा आपका इंतजार।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर बॉलीवुड अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीले लाल रंगों से सजा गुजराती आंगन, शहनाइयों की गूंज, ढलती शाम की सुनहरी रोशनी और नंदिनी समीर की प्रेम कहानी। हम दिल दे चुके सनम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि 90s के दशक की सबसे खूबसूरत सिनेमाई यादों में से एक थी। लेकिन पर्दे पर दिखने वाली इस जादुई दुनिया के पीछे कई दिलचस्प फैसले, अनसुने किस्से और चौंकाने वाले सहयोग छिपे थे। संजय लीला बंसाली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिला और इसका संगीत भी काफी हिट रहा। फिल्म की रिलीज को आज 27 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 27 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और चलिए कुछ कहानियां आपके लिए लेकर आए हैं जो इस फिल्म से जुड़ी हुई है। सो वो सात दिन से मिलती जुलती कहानी, फिल्म की जो बेसिक कहानी है उसकी तुलना अक्सर 1983 में आई फिल्म वो सात दिन से की जाती है। उस फिल्म में भी एक पति अपनी पत्नी को उसके पुराने प्रेमी से मिलाने की कोशिश करता है, हालांकि भंसाली ने इसे अपने अंदाज में पेश किया। क्या सलमान बदलना चाहते थे क्लाइमैक्स? फिल्म का अंत आज भी आइकॉनिक है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान चाहते थे कि नंदिनी आखिर में समीर के पास लौट आए। हालांकि भंसाली अपने ओरिजिनल क्लाइमैक्स पर कायम रहे और नंदिनी ने अपने पति के साथ रहने का फैसला कायम रखा। और वहीं पहली मुलाकात में ही मिल गई थी नंदिनी। संजय लीला भंसाली नंदिनी के किरदार के लिए एक खास चेहरे की तलाश में थे। राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीनिंग के दौरान ऐश्वर्या राय से उनकी मुलाकात हुई और ऐश्वर्या ने उनके काम की तारीफ की। संजय ने बाद में कहा कि ऐश्वर्या की आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसी समय उन्होंने तय कर लिया था कि यही होगी उनकी नंदिनी। और वनराज के लिए पहली पसंद क्या थे अजय देवगन? बिल्कुल नहीं, हम दिल दे चुके सनम में वनराज का किरदार निभाकर अजय देवगन ने दर्शकों का दिल जरूर जीत लिया, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये रोल पहले आमिर खान, शाहरुख खान और फिर संजय दत्त को ऑफर किया गया था। आखिरकार ये किरदार अजय ने निभाया और उसे इतना बाखूबी निभाया कि आज भी उनके वनराज का जो कैरेक्टर है वो आइकॉनिक है। So well, this one goes out for all the fans of Sanjay Leela Bhansali, for all the fans of Salman Khan, Aishwarya Rai and Ajay Devgan. 27 years complete ho chuke hai is film ke. Let's celebrate with this one.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 2:49 हो चुके हैं एंड आफ्टरनून टाइम में आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स. आप तो हमारा साथ देते रहते हैं एंड बॉलीवुड की खबरों को हम आप तक पहुँचाने का काम करते हैं. साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे गाने जो शायद आपकी इस आफ्टरनून को थोड़ा सा और खास एंड स्पेशल बनाए. तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ परी आपके साथ और जैसे कि आप जानते हैं फ्राइडे का दिन होता है खास. बहुत सी फिल्में रिलीज होती है, कुछ फिल्में सुपरहिट, कुछ फिल्में एकदम फ्लॉप. जैसे कि हम जानते हैं लास्ट कुछ टाइम पहले कुछ तीन फिल्में रिलीज हुई, भारत भाग्य विधाता, उसके साथ पैदी और मैं वापस आऊंगा. अब पैदी जो एक साउथ इंडियन मूवी है और बहुत सारी भाषाओं में रिलीज हुई है, इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल धमाल कर दिया और साथ ही साथ जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जो इसके मेकर्स थे, उनको माला माल भी कर दिया. वही मैं वापस आऊंगा और भारत भाग्य विधाता दोनों ही कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा, उसे बहुत ज्यादा तारीफ मिल रही है, यानी कि जो भी लोग इसे देख रहे हैं उसके बाद इसकी तारीफ कर रहे हैं कि इट्स अ मस्ट वॉच. और हमने अक्सर देखा है दैट इम्तियाज अली की फिल्मों के साथ हमेशा ये होता है कि जब ये फिल्म रिलीज होती है लोग इस फिल्म को देखते नहीं है और उसके बाद ये एक क्लासिक बन जाती है. बहुत सी फिल्मों के साथ ये हुआ है एंड आई डू होप दैट मैं वापस आऊंगा इसके साथ ये ना हो, यानी कि क्लासिक तो ये बने जरूर है लेकिन अभी के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर ये चल रही है तो प्लीज जो लोग रोमांटिक फिल्मों को पसंद करते हैं, कुछ ऐसी फिल्में जो दिल को टच करें उनको पसंद करते हैं, तो इस फिल्म को देखिए जरूर और हमें बताएं कि ये फिल्म आपको कैसी लगी. वहीं कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता ये औंधे मुंह गिरी है और यहाँ पर उससे उम्मीदें काफी लगाई जा रही थी. बहुत से स्टेट्स में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया और एक पर एक टिकट फ्री का जो एक कह सकते हैं एक मिठाई जैसा दी गया लोगों को कि भाई एक टिकट तो आपको फ्री मिल रही है, आपको बस एक टिकट खरीदनी है. इसके बाद भी इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया ऑन बॉक्स ऑफिस. सो दैट्स भारत भाग्य विधाता, पैदी एंड मैं वापस आऊंगा. और अभी के लिए तो बस उम्मीद है कि कुछ ऐसी फिल्में आए जो बिल्कुल दिल में उतर जाए और जैसे धुरंधर ने कमाल किया था ऐसा ही कुछ कमाल कर जाए. चलिए दोस्तों, थोड़ी दिन में हम म्यूजिक डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, यानी कि ऑन दिस संडे, और कुछ खास हो रहा है यहाँ स्टूडियो में जो बहुत ही जल्द आपको पता चलने लगेगा. सो बस हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे, और म्यूजिक तो हम सेलिब्रेट करते हैं ईच एंड एवरी डे, वो है आपके साथ. तो बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, यह है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती.

So, well, friends, with this track, हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. And that's your Bombay Talkies on the waves of Radio Masti. मैं हूँ परी आपके साथ till 4 PM. This one goes out for all the fans of Sanampuri.

0: listening to Radio Masti. The time is brought to you by McDonald's.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Masti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
6: Time check 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. देश के उत्तर में कटनी की अवधि शुरू होने वाली है. अघितेहा में 26 जून को गन्ने की कटनी शुरू हो रही है. इससे कुछ दिन पहले बेलवी कारखाने में आज इस विशेष अवसर पर वहां के सभी कर्मचारियों को जुटाया गया. कई अलग अलग विभाग के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे, जिस दौरान वहां पर विशेष प्रार्थनाएँ की गईं. मध्य पूर्व संकट के चलते संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्थिति को पूरी तरह सामान्य पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े इस झटके का प्रभाव जल्द खत्म नहीं होगा. इस बीच मॉरिशस की कंपनियां अब भी फ्रेट लागत में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं. कृषि उद्योग में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते क्षेत्र के साझेदारों द्वारा विदेशी कर

0: कर्मचारियों की भर्ती के लिए करीब 1,000 मांगें की जा चुकी हैं। विदेशी कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मॉरिशस के इन इंडस्ट्री अथॉरिटी नियमों के ढांचे में जल्द होने वाले संशोधन और बदलावों का इंतजार कर रही हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी कर्मचारियों के रोजगार के दौरान कार्य परिस्थितियों और मॉरिशस के श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन किया जाए। पहले चरण में भारत से 300 श्रमिकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। विदेश की खबरों में यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसके चलते सुरक्षा कारणों से सभी बड़े हवाई अड्डों की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसे रूसी हमलों का जवाब बताया। उन्होंने तेल रिफाइनरी के साथ साथ कई अन्य ठिकानों पर हमलों की पुष्टि भी की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: यहाँ पर गानों पे गाने आप सुन रहे हैं और कुछ ऐसे गाने जो आपके इस थर्सडे को एकदम मस्त डे बना रहे हैं। वैसे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड लेकर आते हैं आपके लिए बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। जैसे आप जानते हैं यहाँ स्टूडियो में आज काफी कुछ हो रहा है बिकॉज बहुत ही जल्द वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट म्यूजिक डे और इसी के चलते आपके लिए होगा एक सरप्राइज राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती। हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी फैमिली, बस हमारी कोशिश यही होती है कि आपके लिए हम बेस्ट एंटरटेनमेंट, बेस्ट सरप्राइजेस लेकर आते रहें। सो अभी के लिए जितने भी दोस्त हमारा साथ दे रहे हैं, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस थोड़ी ही देर में ऑन 5499-1294।

0: Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: Well, friends, अभी के लिए it's time for Pari to say goodbye. यहाँ पर enjoy कर रहे हैं selection आप हैं Mr. Kumar, dedicating गाना for Papa Shyam और सभी देवीचंद परिवार के नाम. Love you, Papa. ये message है आपके पापा के नाम. And कहते हैं love that song. जी हाँ, A.R. रहमान का जो mashup हमने चलाया, जिसमें थोड़ा सा तमिल touch आपको अच्छा लगा. आप हैं रोशनी, so thank you रोशनी for always being there and always sending such lovely messages हमारे लिए. हमारे अपाडू परिवार, इस वक्त आप भी घर पर समोसा and coffee enjoy कर रहे हैं, so enjoy your tea time और ऐसे ही connected रहे आप रेडियो मस्ती के साथ. मुलाकात होगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. The Musty. The Musty.
5: शाम की ठीक 4 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको याचना।
6: नमस्कार या सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्थिति को पूरी तरह सामान्य पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर रहे इस झटके का प्रभाव जल्द खत्म नहीं होने वाला। इस बीच मॉरिशस की कंपनियां अब भी फ्रेट लागत में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं। एक कंटेनर के लिए अब भाड़ा शुल्क 1,100 अमरीकी डॉलर तक बढ़ गया है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव और इंश्योरेंस लागत भी व्यापारियों पर ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। कृषि उद्योग में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते क्षेत्र के साझेदारों द्वारा विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए करीब 1,000 मांगें की गई हैं। विदेशी कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी नियामक ढांचे में जल्द होने वाले संशोधन और सुधार का इंतजार कर रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी कर्मचारियों के रोजगार के दौरान कार्य परिस्थितियों और मॉरिशस के श्रम कानून का पूरी तरह से पालन हो। फुटबॉल की दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए आज 3 मैच खेले जा चुके हैं। इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच स्कोर रहा 4-2। गाना ने पनामा को 1-0 से हराया, जबकि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की टीम आपस में टकराई और स्कोर रहा कोलंबिया 3 और उज्बेकिस्तान 1। आज रात 8 बजे चेकिया खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ और रात 11 बजे स्विट्जरलैंड टकराएगा बोस्निया के खिलाफ। आपको याद दिला दें कि ये सभी मैच MBC प्ले पर आप देख सकते हैं। विदेश में यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसके चलते सुरक्षा कारणों से सभी बड़े हवाई अड्डों की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे रूसी हमलों का जवाब बताया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Raftar Vibes, Filmy Rides,
0: RM2.

0: जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून सभी को। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके रिया आपके साथ। और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, 4:09 हो रहे हैं, समय हो चुका है रफ्तार वाइब्स का सिर्फ रेडियो मस्ती पर। थर्सडे की शाम धीरे धीरे वीकेंड की तरफ बढ़ रही है। कुछ लोग ऑफिस से निकल चुके हैं, कुछ अभी भी अपने डेस्क पर लास्ट मील से भेज रहे हैं और कुछ लोग ऑलरेडी कार में बैठकर घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो आज के अगले 3 घंटे होंगे फील गुड वाइब्स के नाम एनर्जेटिक गाने हम लेकर आए हैं। एंड एज यूजुअल आपका मूड तो अच्छा ही हम बनाकर छोड़ेंगे। थोड़ी सी मुस्कुराहट और ट्रैफिक के बीच भी पॉजिटिव रहने का जज्बा यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। और हाँ, हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे कि आप घर पहुँच कर क्या करने वाले हैं आप हमें ज़रूर बताइए। बस एक छोटा सा मैसेज आप भेज सकते हैं 5499-1294। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हैं घर जाकर। कुछ लोग फटाफट डिनर की तैयारी में लग जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा मी टाइम निकालते हैं और कुछ लोगों को बहुत ही पसंद है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो हमें बताएं कि आपको सुकून क्या देता है, आपका फेवरेट थिंग क्या है करने को। और गाने तो हम लेकर ही आते हैं आपके नाम, एज यूजुअल आप ही के पसंदीदा गाने हैं जो हम चलाते रहेंगे। So let me know what you're doing right now और कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर आप भेज सकते हैं आपकी डेडिकेशन सब मैसेजेस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एनर्जेटिक और फील गुड गानों के साथ। ये है आपका रफ्तार वाइब सिर्फ रिया के साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: राइट, आज यू नो दैट हम रेडियो मस्ती पर ऐसे ही खाली हाथ नहीं आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं आपके नाम. एंड वी हैव अ गेम यहाँ. सो हम आपको बता देते हैं दैट अगर आप किसी के लिए कुछ परफेक्ट का गिफ्ट आइडिया ढूंढ रहे हैं या फिर घर को एक नया और खूबसूरत लुक देना चाहते हैं, तो let me tell you that Mystic World MU आपके लिए लेकर आया है बहुत खास चीज़ें. जी हाँ, mysticworld.mu पर आपको मिलेंगी एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स, खूबसूरत गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल टू स्टनिंग होम डेकोर आइटम्स. चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या किसी अपने को सरप्राइज देना हो, मिस्टिक वर्ल्ड के पास हर मौके के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट आइडिया है. और मिस्टिक वर्ल्ड ही लेकर आया है आपके लिए ये गेम, जहाँ पर अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल सकता है 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर. बस छोटा सा बॉलीवुड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके नाम, और बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है. बताइए हमें कि फिल्म कल हो ना हो में अमन माथुर का किरदार किस एक्टर ने निभाया था. फिल्म कल हो ना हो में अमन माथुर का किरदार किस एक्टर ने निभाया था. और सही जवाब हमें पता है कि आपको पता है, तो भेजिए फटाफट 5499194 पूरे नाम और पूरे पते के साथ है. चलिए, गुड लक टू ऑल ऑफ यू.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides, RM2.

0: राइट, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेकर आए थे आपके नाम, बॉलीवुड क्वेश्चन, और हमने पूछा था दैट फिल्म कल हो ना हो में अमन माथुर का किरदार किस एक्टर ने निभाया था, एंड हमें पता है कि आपको ऑलरेडी आंसर पता ही था और बहुत सारे सही जवाब हमें मिले. द राइट आंसर इज शाहरुख खान. जी हाँ, शाहरुख खान ने निभाया था अमन माथुर का किरदार. और यहाँ पर बहुत बहुत बहुत सारे मैसेजेस हैं, इन मैसेजेस के मध्य तो हम खोसे गए थे लेकिन हमने खुद को ढूंढ लिया है लकी ड्रॉ के साथ है. जी हाँ, हमें अपना लकी विनर मिल गया है, मिल गई है हमें अपनी लकी विनर. यहाँ पर आप हैं नर्मदा रामदेनी, एंड आप हैं गान रवि से. सो कंग्रेचुलेशन आपको नर्मदा, आप जीत चुकी है और आपको मिल रहा है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर. जी हाँ, और ये वाउचर आप तक कैसे पहुंचेगा, बाय पोस्ट ये पहुंच जाएगा. सो हम अपने लिसनर्स एक बार फिर उनको बता देते हैं दैट अगर आप किसी के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं या ऐसे ही आप किसी के लिए गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी खुद के लिए आप खरीदना चाहते हैं, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स और स्टनिंग होम डेकोर घर की साज सज्जा के लिए बहुत ही काम में आएगा, तो वहां पर ही आपको मिलेगा mysticworld.mu. जी हाँ, mysticworld.mu has exactly what you're looking for. आप उनके वेबसाइट को जरूर विजिट कर सकते हैं या उनको आप कॉल भी कर सकते हैं 5880765258807652 पर, और वहाँ पर और भी बहुत कुछ आप डिस्कवर कर सकते हैं. सो वंस अगेन आपको कंग्रेचुलेशन नर्मदा, और जो लोग नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, आपकी बारी भी जरूर आएगी. सो नाउ लेट्स हेड टू द नेक्स्ट ट्रैक, एंड ये गाना है फ्रॉम द मूवी कल हो ना हो.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2.

0: Traffic Update. Traffic Update.
1: और दोस्तों, रफ्तार वाइब्स पर गाने तो चलते रहेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी मंजिल तक सुरक्षित और आराम से पहुंचे। इस समय क्या रूट्स पर ट्रैफिक काफी बिजी हो रहा है, कई लोग ऑफिस से निकल चुके हैं, कई लोग घर की तरफ रवाना है और कुछ लोग वीकेंड के प्लान से बनाते हुए सफर का मजा ले रहे हैं। आपको लेटेस्ट और सही ट्रैफिक जानकारी देने के लिए हम सीधा रुख कर रही है ट्रैफिक ब्रांच की तरफ। हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं पुलिस कांस्टेबल सुकाई जी, जो हमें बताएंगे इस समय की ट्रैफिक सिचुएशन, किन रोड्स पर ज्यादा ट्रैफिक है और बहुत कुछ अन्य चीजें। सो पीसी सुकाई जी का हम स्वागत करते हैं। हेलो आपको।
2: हेलो रिया, बन अप्रीमिडी अ टू ले मोंड। अलोर ओ निवो दे ला सर्कुलेशन ओ लेटा दू ट्रैफिक रूटियर पोर सेट फिन अप्रीमिडी, पा दे प्रॉब्लेम अ सिग्नालिस सर नो रूट, पा डैक्सीडेंट ओ ऑब्स्ट्रक्शन सर लेस एक्स प्रिंसिपो की पे जेन व्रेमेंट ले फ्लो दू ट्रैफिक। Et à l'heure actuelle, qui m'opécose avec Dieu, c'est la sortie des bureaux et un bon nombre de véhicules qui peut quitter la capitale et ça peut créer un ralentissement à la sortie sud à la hauteur du rond-point de Codan et à la sortie nord à la hauteur du rond-point de Rochebois et Ristère vers le nord. Ensuite, nous verrons un temps d'arrêt à la hauteur du rond-point de Réduit et Highlands vers le sud, mais le trafic reprend le flot après le pont de Wooden. Sinon, dans d'autres secteurs de l'île, pour le moment, ça roule continuellement. Voilà un peu au niveau de la circulation et l'état du trafic routier pour cette fin d'après-midi. Moi, il y a un communiqué à faire passer. Suite à un communiqué de presse, la police tient à informer tout ben automobiliste et le public en général dans le centre du pays, plus précisément à 16e mille Forestside, qui pourra ben travaux de construction d'un drain en béton près du dépôt UBS, l'eau la route A10, Phoenix Plaisance, pour une durée de 10 mois à partir samedi le 20 juin 2026 jusqu'à le 4 avril 2027. Pour une durée de 10 mois à partir samedi le 20 juin 2026 jusqu'à le 4 avril 2027. En conséquence, pour assurer que ces travaux de construction déroulent en toute sécurité, pour une énorme déviation de la circulation, l'eau et la route temporaire qui m'ont aménagé à côté rond-point de UBS. Pour une énorme panneau de signalisation nécessaire qui pour mettre en place et aussi pour une présence de ben policiers qui pour informe et guide ben automobiliste ou ben usager de la route dans sa secteur. Tout ben automobiliste qui pour passe dans sa secteur de construction là, nous pourrions faire preuve d'extrême vigilance, précaution et aussi conduire de la limite de vitesse qui pour en vigueur dans sa site-là. La police compte le jeu de compréhension et collaboration habituelle pour le bon déroulement de sa ben travaux-là. Sur ce, monsieur Zetou, bonne route, bonne rentrée, merci de votre écoute et à très bientôt pour d'autres infos.
1: थैंक यू सो मच पीसी सुकाई जी। और हमारे लिसनर्स को कहेंगे आप प्रिकॉशन लेते रहिए और ये सफर एंजॉय करते रहिए रेडियो मस्ती के साथ।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: अपनी घड़ी मिलाते चलिए 4:41 और अभी स्टूडियो में आ गए हैं अरविंद। तो चलिए सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या हो रहा है। गुड आफ्टरनून आपको अरविंद।
4: गुड आफ्टरनून
5: आपको। गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। चल रहा है वही गुरु वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, और ग्रुप स्टेज के फर्स्ट राउंड के मैच पूरे हो गए। इनमें कल आज सुबह गाना की टीम की जीत हुई 1-0 से पनामा के खिलाफ। अंतिम मिनट में गाना की टीम ने गोल स्कोर किया और आज सुबह ही ग्रुप के लिए कोलंबिया की जीत हुई 3-1 से उज्बेकिस्तान के खिलाफ। सो आज से वापस ग्रुप ए। अब इन ग्रुप मैच दूसरे मैच होंगे चेक रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका, फिर ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड, बोस्निया, कनाडा, कतार। चेक रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका। चेक रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका की हार हुई थी पहले मैच में। चेक रिपब्लिक के लिए फेवरेट कह सकते हैं। ये मैच 8 बजे आज खेला जाएगा। फिर ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड जिसने मैच ड्रॉ किया था, उसके सामने है बोस्निया। बोस्निया ने भी अपना मैच ड्रॉ किया।

0: गया था कनाडा होम मैदान में कतार के खिलाफ दोनों इन चारों टीमों के पास एक एक अंक है सो ग्रुप बी के जो मैच हैं स्विट्जरलैंड बोस्निया 11 बजे और सुबह लगभग 3 बजे 2 बजे कनाडा का मुकाबला कतार से होगा और कल अर्ली मॉर्निंग मैच ग्रुप ए में मेक्सिको साउथ कोरिया ये मैच 5 बजे सुबह 5 बजे खेला जाएगा चाय के साथ फुटबॉल मैच मेक्सिको साउथ कोरिया दोनों टीमें पहले मैच में इनकी जीत हुई थी मेक्सिको होम मैदान में होगा लेकिन साउथ कोरिया से बच के रहना होगा और कल रात को जो मैच हैं उनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड मोरक्को ये कल के मैच हैं और आज जैसे मैंने बताया चेक रिपब्लिक साउथ अफ्रीका स्विट्जरलैंड बोस्निया कनाडा कतार ये आज के मैच हैं कुछ और खबरें यहीं से आइवरी कोस्ट के खिलाड़ी वही कौन एलाई वही जो पहला मैच खेल पाया था इक्वाडोर के खिलाफ उसे कनाडा में एंट्री नहीं मिली है उसकी टीम जर्मनी के खिलाफ खेलने वाली है सैटरडे को वही जो खेल पाया था उसको येलो कार्ड निस के खिलाफ खेलते हुए उसको येलो कार्ड मिला था स्पॉट फिक्सिंग इसीलिए उसको वहां पर एंट्री नहीं मिली है दूसरा मैच वो नहीं खेल पाएगा उधर काफ़ी बातें चल रही हैं रोनाल्डो के परफॉर्मेंस को लेकर लेकिन एक मैच में उसे जज नहीं किया जा सकता इसीलिए आने वाले मैचों का इंतज़ार करना होगा ट्रांसफर न्यूज लिवरपूल ने विंगर मुनोज के लिए 34.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का रिलीज क्लोज ट्रिगर कर दिया है खबर है कि लिवरपूल की मेडिकल टीम अभी यूनाइटेड स्टेट्स में है वहां पर उसका मेडिकल पूरा करने के लिए मुनोज जो मार्च महीने में उसने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था और 6 साल के लिए वो लिवरपूल के लिए साइन करेगा न्यूकासल यूनाइटेड काफ़ी एडवांस स्टेज पर था उसे साइन करने के लिए लेकिन वो लिवरपूल की पहली साइनिंग होने वाली है जब से अंदोनी इराओला आया है आर्ने स्लॉट के स्थान पर एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है अब कंफर्म हो गया है कि कोनाते रियल मैड्रिड में जा रहा है 4 सालों के लिए रियल मैड्रिड डील आग्री कर चुकी है और ये अभी लिवरपूल को छोड़ते ही वो वहां पर चला जाएगा ये एक फ्री ट्रांसफर है रियल मैड्रिड ने सिल्वा को भी फ्री पर साइन किया था इससे पहले कुकुरेला को 51.8 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर साइन किया गया था क्रिकेट कल के मैचों में भारतीय टीमों की जीत हुई थी और आज के मैच जो खेले जा रहे हैं सेकेंड टेस्ट ओवल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच न्यूजीलैंड की टीम ने 391 रन बनाया इंग्लैंड की टीम अभी 23 रन पर खेल रही है और वीमेन T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच मैच होगा ये इसी में कल भारतीय टीम की जीत हुई थी नेदरलैंड्स के खिलाफ सो दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड
1: थैंक यू सो मच अरविंद
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट
3: You're listening to RM2, a Radio Masti.
4: Baat mano, kabhi kisi se na pyar karna. Naujawano, baat mano.

0: केसरा सिरा, लेकिन क्या हमें बताएं कि केसरा सिरा का तात्पर्य है क्या, इसका मतलब क्या है? वेल, हम अक्सर इस सॉन्ग पर वाइब करते रहते हैं और बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही एनर्जेटिक गाना है, लोगों को बहुत ही पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कल होगा वो होगा, इसलिए आज को खुल कर दीजिए, मुस्कुराइए और हर पल का मजा लीजिए। दैट्स अ ब्यूटीफुल मीनिंग और आशा करती हूँ कि आपने इस गाने को अच्छे तरीके से मन में इसे बिठा दी है। एंड यस, थर्सडे की शाम और रफ्तार वाइब्स यहाँ पर कंटिन्यू हम करते हैं। आज छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ऐसे ही गेम नहीं है। आज अगर आपको शाम, इस शाम को एक चीज करने का मौका मिले, सिर्फ एक चीज करने का मौका मिले जो आपको खुशी दे, तो वो क्या होगी? घर पर गर्म चाय, फेवरेट सीरीज, फैमिली डिनर, दोस्तों से बात, या फिर सिर्फ आराम? आप हमें जरूर बता सकते हैं, मैसेज भेजकर बता सकते हैं। हो सकता है कि आपका जवाब किसी और लिसनर को भी इंस्पायर कर दे कि वो अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले। वीकेंड करीब है, मूड अच्छा रखिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो मस्ती पर रफ्तार वाइब्स का मजा आप लेते रहिए। इट्स मी रिया आपके साथ विद सम गुड म्यूजिक।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएम2।

0: 5:08 हो चुके हैं और अफ्तार वाइब्स का दूसरा घंटा शुरू हो रहा है सिर्फ रेडियो मस्ती पर। अगर आप अभी रोड पर है तो उम्मीद है सफर ठीक चल रहा होगा। कुछ लोग अब तक घर पहुंच गए होंगे, कुछ लोग अभी भी ट्रैफिक में है और कुछ लोगों के लिए काम का दिन अभी पूरा भी नहीं हुआ होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि थर्सडे की शाम में एक अलग ही खुशी होती है। वीकेंड बस एक कदम दूर है, इसलिए आज का मंत्र है टेंशन थोड़ी कम, मुस्कुराहट थोड़ी ज्यादा। इस घंटे में हम लेकर आए हैं बहुत ही अच्छे गाने आपके नाम, अंदर को हल्का कर देने वाली गाने और एक दो एनर्जेटिक गाने यानी कि मिक्स रॉ गाने यहाँ पर हम लेकर आए हैं। ऐसे गाने जो सफर को भी खूबसूरत बना दे और शाम को भी रंगीन बना दे। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि घर पहुंचकर आज सबसे पहले आप क्या करेंगे? चाय का कप, फैमिली के साथ बातें या थोड़ी देर के लिए बस आराम? मैसेज आप जरूर हमें कर सकते हैं, आपकी डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस जरूर आप भेज सकते हैं 5499-1294। रफ्तार वाइब्स रिया के साथ।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आशिकाना आलम है, इश्क निभा जा

जिंदगी में हम सब किसी न किसी रेस में भाग रहे होते हैं। सुबह अलार्म से लेकर शाम घर पहुंचने तक हर चीज एक शेड्यूल पर रह जाती है, लेकिन कभी कभी जरूरी होता है कि थोड़ा सा रुकना और देखना कि हम किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। शायद अपने परिवार के लिए, शायद अपने सपनों के लिए, या फिर एक बेहतर कल के लिए। और जब आज शाम घर का दरवाजा खुले तो एक पल के लिए उस सफर को याद कीजिए जो आपने तय किया है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाता है। तो अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल था तो बात कोई भी नहीं है, इट्स टोटली फाइन। शाम आपकी है, दिन शायद गुजर रहा है, पर शाम आपकी है, आप इसे बेहतर बना सकते हैं।

0: तो थोड़ा आप मुस्कुराइए, गाने एंजॉय कीजिए और खुद को याद दिलाइए कि आपने आज भी अपना बेस्ट दिया है। रफ्तार वाइब्स पर इसी पॉजिटिव सोच के साथ है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। एंड वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स ऑन द सेकंड आवर ऑफ रफ्तार वाइब्स रिया के साथ। आई होप यू आर एंजॉयिंग दीज ट्रैक्स और हम आपकी मैसेजेस के साथ थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: दोस्तों, फैशन सिर्फ कपड़ों का नहीं, कलर्स का भी खेल होता है। आज का फैशन टिप ये है, अपने स्किन टोन और मूड के हिसाब से कलर्स आप चूज कीजिए। ब्राइट कलर्स जैसे येलो, कोरल या टर्क्वाइज आपके लुक में फ्रेशनेस और एनर्जी ले आते हैं, जबकि पेस्टल शेड्स एक सॉफ्ट और एलिगेंट टच देते हैं। और अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाए कि क्या पहनना है, तो एक मोनोक्रोम लुक आप ट्राई कर सकते हैं, यानी एक ही कलर फैमिली के शेड्स। ये सिंपल भी लगता है और बहुत ही क्लासी भी। सबसे ज़रूरी बात, जो रंग आपको खुश और कॉन्फिडेंट महसूस कराए, वही आप पर सबसे ज़्यादा सूट करता है। ये था आज का फैशन टिप, ब्रॉट टू यू बाय अल्कोरी फैशन। क्योंकि स्टाइल तब भी कंप्लीट होता है जब आप खुद को अच्छा महसूस करें।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय अल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: यू आर लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती।

होटलिस्ट से हमारे साथ कनेक्टेड है रोजी और आप ये गाना सुनना चाहते थे तो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये गाना था ही तो हमने जला दिया आपके नाम और हमारे सभी लिसनर्स जो इस समय साथ दे रहे हैं आई होप यू एंजॉय दिस वन। अभी तो 5:53 हो चला है, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन, सो स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ रेडियो मस्ती के साथ ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिए।

0: घड़ी मिला लीजिए, शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल अमरीका और ईरान के बीच तय हुए शांति समझौते की एक प्रथम प्रति पर हस्ताक्षर किए। 60 दिनों के लिए प्रभावी ये होगा। मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने की घोषणा के साथ जहां तेल की कीमतों में गिरावट आई है, वहीं IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका प्रभाव जल्दी खत्म होगा। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप एल में कल इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच एक शानदार मैच खेला गया। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 के स्कोर से हराया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात वेसाई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ रात्रि भोज से ठीक पहले अमेरिका और ईरान के बीच तय हुए शांति समझौते की एक प्रथम प्रति पर हस्ताक्षर किए। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब से 60 दिनों के लिए प्रभावी होगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि व्यावहारिक रूप से इस समझौता जापान पर हस्ताक्षर का अर्थ है होर्मुज ज्ञापन पर हस्ताक्षर का अर्थ है होर्मुज जल मार्ग तुरंत खोल दिया जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी हटा दी जाएगी। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात वेसाई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ रात्रि भोज से पहले अमेरिका और ईरान के बीच तय MOU की एक प्रति पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता 14 बिंदुओं पर आधारित है। अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शुरू करेगा जो 30 दिनों के भीतर पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी और इसके बाद इलाके से अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा। ईरान ने 60 दिनों तक होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को निःशुल्क और सुरक्षित मार्ग प्रदान करने का वादा किया है। तेहरान ने प्रतिबंधों को हटाने के बदले अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को घटाने तथा परमाणु हथियार विकसित न करने का भी आश्वासन दिया।
2: Reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
1: नेटो के महासचिव मार्क रूट ने कहा कि होर्मुज जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता की बहाली एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।
3: The restoration of free passage through the Strait of Hormuz will be a massive step forward.

0: समझौते में ईरानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन की योजना भी शामिल है, जो अमेरिका और उसके साझेदारों द्वारा समर्थित होगी, बशर्ते कि परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौता तय हो जाए। वाशिंगटन का कहना है कि ईरान को अपना तेल बेचने की अनुमति होगी। इस समझौते को अंततः संयुक्त राष्ट्र परिषद के एक बाध्यकारी प्रस्ताव द्वारा मंजूरी दी जाएगी।
1: मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन स्थिति के सामान्य पर लौटने में अभी महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका प्रभाव जल्द खत्म नहीं होगा। इस बीच मर्चेंट कंपनियों को फ्रेट लागत में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, जो प्रति कंटेनर $1,100 तक पहुंच गई है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: 1950 के वर्षों से खाद्य पदार्थों के सप्लायर अजलिस उन मॉरिशन कंपनियों में शामिल जिन्हें मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई के परिणामों का सीधा असर झेलना पड़ा है। अजलिस कंपनी लिमिटेड की CEO शारन आमदनी ने कहा, फॉरेस्ट के लिए फ्रेट में 35% की वृद्धि, भारत के लिए 40% की बढ़ोतरी, और चूंकि दुबई के लिए वहां बंदरगाह बंद है, हमें ओमान से गुजरना पड़ रहा है, ऐसे में 100% पूरी तरह से बढ़ोतरी, लेकिन साथ में ये भी देख रहे हैं कि सभी स्तरों पर वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज डॉलर बढ़ता जा रहा है। 70 वर्षों से स्थापित अजलिस ने दुनिया भर में सप्लायरों के लिए एक महत्वपूर्ण नेटवर्क कायम किया है। इस संबंध की बदौलत उसे कुछ लाभ भी हुए हैं। डॉक्टर शारन रामदनी ने आगे बताया, पहले तो हम सप्लायरों के साथ भारी समझौता बातचीत करते हैं, साथ में ये सप्लायर केवल सप्लायर ही नहीं है, सहयोगी भी हैं। हम उन्हें मना पाते हैं कि फ्रेट खर्च बांटने के लिए, साथ ही एवरेज कॉस्टिंग कर रहे हैं पुराने स्टॉक को लेकर। शुरुआत में खर्च के बोझ को संभालने के लिए ये पहले कदम है, लेकिन इसके साथ साथ बचाव कदमों के लिए भी वैश्विक प्रवृत्ति जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक एवं जियोपॉलिटिकल हैं, ऐसे में संबंधित कदम उठाए जा रहे हैं, भारी संख्या में सामान खरीद रहे हैं, खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां तक हो सके यही कोशिश कर रहे हैं कि इसे ज़्यादा बढ़ने से रोक सके। विश्व व्यवसाय के चलते कस्टम कई प्रकार की स्थितियों का सामना कर रहा है। लड़ाई के कारण गतिविधि सेक्टर में काफ़ी अनिश्चितताएं उत्पन्न हुई हैं, फ्रेट काफ़ी बढ़ गया है और साथ में समुद्री परिवहन खर्च भी। कस्टम हाउस ब्रोकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अफजल दिलबार्ड ने कहा, समुद्री फ्रेट में भी पीक सीजन है, लो सीजन भी है। कभी कभी $900 में कंटेनर मिल जाता था, $1,200 में भी पहले हम समझौता बातचीत कर पाते थे जब बल्क पर कर रहे थे। एक कंप्यूटर सिस्टम है, अतः या तो इसे ले लें या फिर छोड़ दें। हिंद महासागर के टापुओं को $2,700 से $3,800 $20 प्रति कंटेनर के लिए, जब लड़ाई होती है तो जहाज के लिए, कर्मचारियों के लिए, सामानों के लिए इंश्योरेंस की मांग की जाती है। अब कुछ बीमा कंपनी ये तय करती हैं कि किन इलाकों से नहीं गुजरना चाहिए। दूसरी बात, जहाज़ों को अपना मार्ग ही बदलना पड़ता है, मतलब ज़्यादा लंबा रास्ता, ज़्यादा खर्च। 100 दिनों से अधिक समय की लड़ाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौते से तेल के दाम में थोड़ी स्थिरता आई है, लेकिन लड़ाई से पहले वाली स्थिति के लौटने में कई महीने लग जाएंगे। अफजल दिलबार ने आगे बताया, देखते हैं कि कहीं लड़ाई हो रही है तो दूसरी तरफ सब कुछ ठीक है। शुरुआत में ऐसा होता है, मामला इतना आसान नहीं है, ये वैश्विक मुद्दा है, क्योंकि समुद्री कंपनियां केवल इन मार्गों पर काम नहीं करती हैं, अन्य मार्गों से भी गुजरती हैं, काम करते हैं। जब मांग ज्यादा है, जगह कम है, तब फ्रेट प्रभावित होता है। अगर युद्ध खत्म भी हुआ तो हमारे विचार से 3-4 या 5-6 महीने में समुद्री क्षेत्र में कुछ स्थिरता आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद से दुनिया भर में पेट्रोल के दाम में अस्थिरता आती रही है। पिछले सोमवार को ईरान के साथ तय औपचारिक समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से पेट्रोल सप्लाई और ईंधन के दामों पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने सचेत किया है कि युद्ध विराम के लिए जरूरी शर्तें रखी जाती हैं, लेकिन मंडियों

0: में संतुलन की तीव्र वापसी के लिए ये पर्याप्त नहीं है।
1: जल संकट के बीच कौवाश व्यवसाय के लिए नई पाबंदियां लागू हो रही हैं। सरकार पानी के उपयोग को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के वास्ते जरूरी कदम उठा रही है। वहीं इस क्षेत्र के संचालक ड्राई वाश और बारिश के पानी के उपयोग जैसे विकल्प अपनाते जा रहे हैं। सुनिए।
2: देश भर में कौवाश के लिए हर महीने 14,000 क्यूबिक मीटर से अधिक पानी की खपत होती है। वर्तमान में इस सेक्टर में 257 कंपनियां संलग्न हैं। इनमें पूजा सिवोदत भी शामिल हैं, जो अपॉइंटमेंट पर कौवाश सेवा प्रदान करती हैं। पानी की उपलब्धता से जुड़ी कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने एक वैकल्पिक समाधान अपनाया है, बारिश के पानी को इकट्ठा कर दैनिक कार्यों में उपयोग करना। CWA के बजाय बारिश के पानी का उपयोग करते हैं, भाप का भी उपयोग करते हैं। यदि बारिश न हो, पानी न मिले, तो भाप प्रणाली का उपयोग करते हैं। इस पहल की बदौलत वो अपनी जलापूर्ति की निर्भरता को लगभग आधा कम करने में सफल रही हैं। बारिश के जमा पानी के लिए 20 लीटर गाड़ी पीछे उपयोग करते हैं। यदि भाप का उपयोग करें तो कम पानी, CWA के पानी के लिए गाड़ी पीछे 40 से 45 लीटर का उपयोग करते हैं। प्रयासों के बावजूद स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पिछले महीनों में कम वर्षा के कारण देश में जलापूर्ति पर दबाव बढ़ गया है, जिससे ये क्षेत्र
1: अब खबर फीफा विश्व कप 2026 से जुड़ी है। ग्रुप एल में कल इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच एक शानदार मैच खेला गया। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 के स्कोर से हराया। हैरी केन, जूड बेलिंगम और मार्कस राशफोर्ड ने इंग्लैंड के लिए गोल किए। और इस शुक्रवार शाम को 2026 विश्व कप में 4 मैचों के साथ एक और रोमांचक रात की उम्मीद। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट में अपनी मजबूत शुरुआत बरकरार रखने की कोशिश करेगा, जबकि मोरक्को स्कॉटलैंड के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का प्रयास करेगा। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
3: शुरुआती मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुरत यकीम की टीम स्विस टीम अब हर हाल में वापसी करने के इरादे से उतरेगी, लेकिन उनके सामने होगी एक बेहद जिद्दी और मजबूत बोस्नियाई टीम। दोनों ही टीमें अपने पहले मैच में ड्रॉ खेलकर यहां पहुंची हैं, इसीलिए ग्रुप बी का यह मुकाबला दोनों के लिए करो या मरो जैसा हो गया है। अगर स्विस टीम को इस बार किसी बड़े उलटफेर या बड़ी गलती से बचना है तो उनके फॉरवर्ड को अटैक में अपनी धार और तेज करनी होगी। कनाडा के वैंकूवर शहर में सब मेजबान को होस्ट कनाडा की टीम अपनी घरेलू फैंस के सामने कतार के खिलाफ मैदान में उतरेगा। कतार ने अपने पिछले मैच में स्विट्जरलैंड को ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया था, जबकि कनाडा भी बोस्निया के खिलाफ ड्रॉ खेलकर आया है। इस लिहाज से यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद स्ट्रैटेजिक बन चुका है। होम मैदान पर खेल रही कनाडा की टीम को आज फेवरेट माना जा रहा है। उन्हें मैच में शुरू से ही दबदबा बनाना होगा, तेज रफ्तार फुटबॉल खेलनी होगी और विपक्षी टीम के साइड एरिया को पूरा इस्तेमाल करना होगा। दूसरी ओर कतार की नजरें मजबूत डिफेंस और तेज काउंटर अटैक पर टिकी होगी, ताकि वो कनाडा की टीम के डिफेंस की कमजोरियों का फायदा उठा सके। आखिर में मेक्सिको और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाला एक ऐतिहासिक मुकाबला है, जिसकी गवाह वर्ल्ड कप के इतिहास की दो सबसे अनुभवी टीमें बनने जा रही हैं। ग्रुप ए का यह समीकरण बेहद कड़ा और दिलचस्प हो चुका है। दोनों ही टीमें अपने अपने पहले मुकाबले जीतकर पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मैदान में कदम रख रही हैं। मेक्सिको टीम को आज अपने फैंस के जबरदस्त सपोर्ट का फायदा मिलेगा। मैच की आक्रामक शुरुआत, हाई इंटेंसिटी गेम प्ले और रफ्तार को अचानक बदलने की काबिलियत ही आज मेक्सिको का सबसे बड़ा हथियार होगा, लेकिन उन्हें दक्षिण कोरिया जैसी बेहद अनुशासित और सेट टीम के खिलाफ फूंक फूंक कर खेलना होगा। दक्षिण कोरिया की टीम भी पिछला मैच जीतकर आ रही हैं और उनकी बेहतरीन टैक्टिक्स और टीम कॉम्बिनेशन आज मेक्सिको

0: उसकी असली परीक्षा लेगा।
1: विदेश खबरों में, यूरोप के अपने दौरे के अंतिम चरण में भारत के प्रधानमंत्री पेरिस में हैं। वे वहां लगने वाले वीवा टेक सम्मेलन में भाग लेंगे। आज उन्होंने वहां के वरिष्ठ व्यवसायिकों और सीईओ के साथ बैठक लगाई। जरा विस्तार रिपोर्ट में।

0: औपचारिक दौरे के अंतिम चरण पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल पेरिस पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने एवियन में लगे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जहां भारत एक अतिथि देश की तरह आमंत्रित किया गया था। पेरिस में आज भारतीय प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ फ्रांसीसी व्यवसायियों, निवेशकों और कंपनी CEOs के साथ बैठक लगाई। उन्होंने वरिष्ठ यूरोपीय कंपनी मिस्ट्रल AI के CEO ऑचर मेंच के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया, मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार तथा जिम्मेदार AI प्रशासन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मोदी जी ने फ्रांस के साथ आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने की भारतीय सरकार की कटिबद्धता जाहिर की। फ्रांस में बसे भारतीय डायस्पोरा के लोग मोदी जी के होटल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने लोगों से भेंट करके खुशी जताई और भारत तथा फ्रांस के बीच बेहतरीन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए डायस्पोरा का आभार प्रकट किया। इस दौरे के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री पेरिस में VivaTech शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों में बादल घिरएंगे, हल्की बारिश हो सकती है, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 और अधिकतम 24 से 26, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:44 पर, शाम को सूर्यास्त 5:38 पर होगा।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: शोक समाचार सुनिए। रॉयरोड पेचित रिविया में रॉयरोड पेचित रिविया में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्डर के श्री सुरेंद्र अपादू, श्री सुरेंद्र अपादू जो बेबी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले 198 कैप्यूसिन स्ट्रीट को मॉडल रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे रॉयल रोड पेचित रिविया से मोहा फ्यूनरल्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। पोंकुलविल सावान रोड नोवेल फ्रांस में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री दुष्यंत सुकन जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे कुणाल कुमार सुकन के मकान पोंकुलविल सावान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजिन नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। माइकल लील सेमोटेमे 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती एंतामा दालिवादू पैदाशीनाम आचादू और जो सूर्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान माइकल लील सेमोटे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेमोटे बेलोम्भ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

शाम अब धीरे धीरे रात की तरफ बढ़ रही है। बाहर अंधेरा छा चुका है, हवा में थोड़ी ठंडक है और दिन भर की भाग दौड़ अब धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। घड़ी में बज रही है 6:30 और रफ्तार वाइब्स का तीसरा और सबसे सुकून भरा घंटा शुरू हो रहा है सिर्फ रेडियो मस्ती पर। आज के इस आवर में रफ्तार थोड़ी कम होगी और एहसास थोड़ी ज्यादा। सॉफ्ट रोमांटिक और दिल को छू जाने वाली गाने आपका साथ निभाएंगे। शायद आप अब घर पहुंच चुकी है, शायद चाय का कप हाथ में है, शायद फैमिली के साथ बैठकर आज के दिन की बातें हो रही है। और अगर आप अभी भी सफर में हैं तो उम्मीद है कि ये गाने आपका साथ और भी खूबसूरत बना देंगे। कभी कभी शाम का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये होता है कि हम कुछ देर के लिए खामोशी को भी सुन पाते हैं। दिन भर के शोर के बाद दिल को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। तो इस घंटे में बस आप रिलैक्स कीजिए, अपनी फेवरेट लोगों को याद कीजिए और इन प्यारे गानों के साथ इस शाम को आप महसूस करते जाइए। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रिया और आप सुन रहे हैं योर रफ्तार वाइब्स।

वेल, बात करते करते 6:52 हो चला है और अभी हम बढ़ेंगे आपके मैसेजेस की ओर। यहाँ पर व्हाट्सएप पर विजया साथ दे रही है, आप है वाकवा से एंड आई होप यू लविंग द ट्रैक्स। एंड वी ऑल्सो हैव रवि, आप है होशबगंज से और गाने आपको भी पसंद आ रहे हैं। आपके नाम, आपके पूरे परिवार के नाम हम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करके जाएंगे क्योंकि अब तो टाइम ही हो चला है जाने का। हमारे बाद आपको मिलेगा दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज। आ गई है हमारी दिव्या लेकर बहुत ही खूबसूरत गाने आप सभी के नाम। वेलकम सीता बलराम जी, आपकी मम्मा है भागवंती और आप साथ दे रही है फ्रॉम शतुबिनागस। तो चलिए नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम भी जाता है और इसी के साथ हम आपसे कहेंगी बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, हैव अ रियली नाइस थर्सडे इवनिंग अपनों के साथ और रेडियो मस्ती के साथ।

0: Well, कहने वाली बात तो यही है कि कुछ गानों के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं और इनको सुनने के बाद किस तरीके से आप अपनी यादों को रिवाइव करते हैं, किस तरीके से कभी कभी आंखें नम भी हो जाती हैं। हाँ, आई कैन टोटली रिलेट टू इट, क्योंकि गाने के ज़रिए ही हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। पहले ज़माने में लोग गानों के ज़रिए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, कभी कभी प्रपोज भी करते थे। और चलिए, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन फिर भी डू नॉट फॉरगेट कि फीलिंग्स तो बस दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। वेल, शाम के 7:08 हो चुके हैं। दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज, जहाँ पर हमारा और आपका साथ रहेगा टिल 9 PM। सो जहाँ से भी कनेक्टेड हैं, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। और आपसे हम ज़रूर बात करना चाहेंगे ऑन 4282 3 5। लाइन खुली हुई हैं, तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट द मैजिकल नंबर इज 4282 8035 402 435। और आप हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं, एंड द नंबर इज 5499 1294। तो चलिए, इस म्यूजिकल कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे और ऐसे ही आपके मन को बहलाते रहेंगे।
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Well, that's a beautiful, beautiful gana taken up from the movie Jaane Tu Ya Jaane Na. कहीं तो होगी वो, शायद आपके मन में है, शायद आपके ख्यालों में भी है,

और अगर आप प्यार करते हैं तो दिमाग और दिल का जंग तो चलता ही रहता है। बट कहते हैं ना कि योर हार्ट माइट बी ऑन द लेफ्ट साइड बट इट्स ऑलवेज राइट। अगर आपको 1% भी लगता है ना कि आपको प्यार हो गया है तो यकीन मानिए आपको सच में प्यार ही हो गया है।

0: आप प्यार पर विश्वास रखते हैं, अगर आप प्यार पर बिलीव करते हैं तो बिल्कुल वो एक दिन अचानक सामने आ ही जाएगा या फिर आ ही जाएगी। वेल कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी आपको प्यार को तलाशने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका इरादा अगर सच्चा है तो प्यार आपको तलाशता है। चलिए, यहाँ पर 7:20 हो चुके हैं। इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है चिल 9 PM। यहाँ पर काफ़ी लोगों से हमारी बात हो रही थी और अनलकीली गिरीश से बात करते करते टेक्निकल इशू की वजह से लाइन कट गई। अगर हो सके हमें ज़रूर एक बार फिर से याद करिएगा। और फिलहाल के लिए वी हैव प्रीति जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, चलिए उनसे हम बात करेंगे। हेलो प्रीति, नमस्कार।
1: नमस्कार, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ।
0: अच्छी हैं, और प्यारी सी आवाज के साथ। ऑलरेडी जब आपने मुझे हेलो कहा ना तो मुझे पता चल गया कि आप ही हैं। तो चलिए प्रीति, आप मुझे बताइए, आपका डिनर हो गया?
1: नहीं, अभी अभी से काम करके आई
0: हूँ। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, मतलब ट्यूसडे की तरह आज भी बस काम से लौटने के बाद आपने हमें याद किया। That's really sweet of you, Preeti. And हमेशा जब हमारे कॉलर हमसे बात करते हैं ना तो मुझे ये पूछना बहुत ही अच्छा लगता है कि आपका डिनर हो गया कि नहीं, क्योंकि ये जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपका डिनर हो गया। मे बी आप परिवार वालों के साथ थोड़े गपशप गप्पे लड़ा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात होती है प्रीति। जब आप काम से लौटते हैं ना तो अपनों के साथ आप जो कम्युनिकेशन रखते हैं वही मेमोरी बन जाता है आगे चलकर। सो आई जस्ट होप कि आप हर एक वक्त का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। और प्रीति मुझे बताइए कि आज आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: बेकाबू।
0: ओहो, देखा तुझको, यही ना?
1: जी।
0: लगता है कि आप 90s का एक बहुत ही आर्डेंट फैन है।
1: जी, मैं संजय कम को फैन हूँ।
0: और चलिए आप मुझे बताइए कि ये गाना किसके नाम आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: सभी सुनने वालों के लिए।
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रीति, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। एंड चलिए, डोंट फॉरगेट टू हैव योर अर्ली डिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। टेक केयर, बाय बाय।
1: बाय।
0: सो ये थी हमारी प्यारी सी प्रीति, हमेशा अपनी प्यारी प्यारी मीठी आवाज़ के साथ हमसे बात करने आ जाती हैं। वैसे ट्यूसडे को पहली बार के लिए उनको मौका मिला हमसे बात करने के लिए, इट वाज अ वेरी फर्स्ट टाइम। और देखिए आज भी जाकर उनको लाइन मिल गई। सो आई एम वेरी श्योर कि ये प्रीति बहुत ही खुश हो रही होगी कि फाइनली काम से थके हारे उनको रिलैक्स करने का टाइम मिल रहा है। सो प्रीति, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स और अपना ये फेवरेट गाना आप एंजॉय कीजिए।
2: Evening Lounge.
3: RM2.
2: Radio Musti.

0: जाहिर सी बात है जब प्यार होता है दिल पर काबू नहीं होता है और कभी कभी दिल थोड़ा सा बेचैन हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, इसलिए शायद कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा सा कच्चा है। और चलिए प्यार में दिल तो पक ही जाता है और आई जस्ट होप कि प्यार में आप इंतज़ार ना करते रहे, इसीलिए तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप अपने मैसेजेस हम तक पहुँचाएं। कभी आप किसी से प्यार करते हैं एंड आपको रिजेक्शन से डर लगता है, सो यू डोंट नीड टू फियर रिजेक्शन। आपको बस अगर ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहिए है ना, तो बस आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही दीजिए। और वैसे कहते हैं ना कि क्लैरिटी इज़ बेटर दैन अ क्लियर रिजेक्शन। तो आई जस्ट होप कि कभी भी आपको ज़िंदगी में इतना भी मेहनत करना ना पड़े कि बस प्यार से आपसे दूर हो जाए। बस इतना हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि जहाँ पर भी आप रहे आपका प्यार हमेशा सलामत रहे और आपका प्यार आपसे कभी ना छूटे, कभी ना रूठे। वेल वेल, इट्स ऑलरेडी 7:31 एंड चलिए कोई है हमारे साथ बात करना चाहेंगी और उनकी प्यारी सी आवाज़, मधुर सी आवाज़, जैसे ही उन्होंने भी हमें हेलो कहा तो हमें पता चल गया कि कौन है। हेलो, नमस्कार उर्वशी जी।
1: नमस्कार, कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं आप? ओके, उर्वशी जी से मैंने पूछा कि आपने डिनर ले लिया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं गाना सुन के ही डिनर लूंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, गाने के पीछे आपका आपकी भूख भी मर गई है, ये अच्छी बात है। वैसे गुड म्यूजिक के साथ जब भी आप कनेक्टेड रहते हैं ना, तो ऐसी फीलिंग आ ही जाती है। और वैसे कहते हैं ना उर्वशी जी कि इट हैज़ बिन साइंटिफिकली प्रूव्ड, कि विज्ञानों ने ये प्रूव किया है कि जब आप गुड म्यूजिक के साथ जुड़े रहते हैं तो ये आपके पाचन सिस्टम के लिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। सो आई एम वेरी श्योर कि अभी आप खाना खाते खाते बहुत ही अच्छा थेरेपी है। तो चलिए उर्वशी जी, अगला गाना किन के नाम?
1: मेरे लिए,
0: आपके लिए, आपको आपको देख कर ना मेरे दिमाग में बस एक ही वर्ड आता है, वो है सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। सो आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा और आई जस्ट होप कि हमेशा आप ऐसे ही फ़ोन करते रहेंगे, खुद के लिए गाना मांगेंगे, मेरे लिए भी डेडिकेशन करेंगे। इट्स रियली स्वीट ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच उर्वशी जी। आप बहुत ही कम बात करती हैं लेकिन जब भी आप फ़ोन करती हैं ना तो ये पॉजिटिव वाइब हमें मिल ही जाता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। सो ये थी हमारी प्यारी सी उर्वशी जी। और चलिए एक और फ़ोन कॉल हमें यहाँ पर आ रहा है, तो चलिए उनसे हम बात करेंगे। हेलो जी, हेलो, हेलो,
2: इससे है दिव्या भारती।
0: ओह माय गॉड, यस, कल गिरीशा थी और आज दिव्या है।
2: दिव्या भारती जी,
0: कैसे हैं आप? राजेश जी,
2: कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए, सब ठीक ठाक?
2: सब ठीक, कुशल मंगल।
0: ओहो, बहुत ही बढ़िया। जिंदगी में बस ऐसा ही आपको जो कहते हैं ना बिहेवियर, जो स्पिरिट होता है वो ऐसे ही होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया
2: आपकी दुआ से।
0: दैट्स रियली स्वीट।
2: हाँ जी, अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बताइए राजेश जी, आप आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
2: त्रिशूल का गाना।
0: त्रिशूल का गाना, कौन सा वाला?
2: मुहब्बत बड़े काम की चीज है।
0: ओहो, सच में मुहब्बत बहुत ही बड़े काम की चीज है।
2: एक, not, of course.
0: एक बार प्यार की लत लग जाए ना तो ये उतरती
2: तो
0: नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, जो प्यार करता है वही समझेगा और जिनको प्यार की लत लग गई है वो उतरने से भी नहीं उतरता है। इसीलिए कहते हैं कि प्यार का जो अगर 40 डिग्री का बुखार चढ़ जाए ना तो ये सर से उतरने का नाम नहीं लेता है।
2: ओह माय गॉड, क्या बोला आपने।
0: थैंक यू सो मच राजेश जी। हाँ जी, बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। सो थैंक यू सो मच राजेश जी, आपने फोन किया और आपका ये गाना हम जरूर थोड़ी देर में चलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।

0: बाय।
1: तो ये थे हमारे राजेश साहब, जब भी आते हैं तो अपना सिग्नेचर लाइन बोल के ही यहाँ पर अपना ओपनिंग करते हैं, ओ माय गॉड। तो चलिए, दैट वाज राजेश साहब, एंड बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और काफ़ी टाइम के बाद ही रिप्लाई करते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर उनका गाना ज़रूर हम चलाएँगे। 7:35 हो चुके हैं और उर्वशी जी का ये अगला गाना ज़रूर हम चलाएँगे, विवाह मूवी से लिया गया, दो अनजाने अजनबी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो चलिए, अभी के लिए वी हैव दिस ब्यूटिफुल गाना टोल दोज, जो शायद बहुत ही जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही है, तो इस फीलिंग से आप जरूर रिलेट कर पाएंगे।
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musti.
1: शायद आपके साथ बहुत ही बार हुआ होगा कि आप सोचते हैं कि जब आज वो मिलेगा या फिर मिलेगी तो उनसे हम बहुत ही बातें करेंगे, लेकिन मिलने के बाद दिल में यही ख्याल आता है कि मिलकर अब क्या ही बोलें, प्यार में ऐसा हो ही जाता है ना। 7:40, चलिए राजेश साहब का ये गाना हम जरूर चला रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज दिव्या के साथ टिल 9 PM। चलिए, एक और कॉलर ने हमें फोन किया था, दिव्यानी जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। वैसे उनको हमने लाइन पे रखा और मैंने देखा कि लाइन कट गई, शायद कुछ इशू हुआ होगा, बट कोई बात नहीं, अगर दिव्यानी जी इस वक्त आप हमें सुन रही हैं तो ये गाना खासतौर से आपके नाम भी।

0: अब क्या कहें, प्यार में होता ऐसा हो ही जाता है। चलिए यहाँ पर इट्स ऑलरेडी 7:52 एंड यहाँ पर कोई है हमारे साथ और चलिए हम उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, पूर्णिमा जी।
1: नमस्ते माँ, कैसे हो आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
1: हाँ, थोड़ा खराब था, ऐसा था नहीं, सर्दी खांसी होता।
0: बिल्कुल, सीजनल फ्लू तो होगा ही, कभी सर्दी कभी गर्मी।
1: हाँ, सर्दी जुकाम।
0: और ऐसे में आपको काढ़ा जरूर पीना चाहिए। बिल्कुल, आपको काढ़ा पीना चाहिए और स्पेशली अदरक वाली चाय, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वक्त वक्त में आप अदरक वाली चाय जरूर पीते रहिएगा और हमारा जो गर्मा गर्म गाना है ना, आप उसको भी आप सुनते रहिएगा।
1: बहुत धन्यवाद।
0: चलिए, आप
1: सुना था मतलब सबको यही दवाई वापी ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो पूर्णिमा जी, आप मुझे बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: मुझे गाना वहाँ चला दिया,
0: सावन का महीना,
1: मिलन के सावन का महीना, पवन करे शोर।
0: अभी के लिए सावन का महीना नहीं, विंटर का महीना चल रहा है और अपनी तरफ से आप पूरा पूरा अपना प्रिकॉशन लेते रहिएगा और सर्दी खांसी अगर हो ना तो आप ठंडे पानी को अवॉइड कीजिए।
1: हाँ, गाना वहाँ खास करके हम अपन माता जी खातिर मांगत है, जो दुनिया में नहीं उनकर मरला हो
0: लहर
1: के 20 तारीख के 2 बजे उनकर माथी पर रहल, हम कभू नहीं भूला, सातों जन्म तक हमार माँ के फिनिशों के दिन नहीं भूला। बाकी हम अकेले नौ बोलैचा में, हम अकेले मामा के उनकर हम दर्द।
0: और वैसे कहते हैं ना कि माँ का स्थान, माँ का दर्जा तो कोई नहीं ले सकता है, माँ तो माँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनका याद में जाना वहाँ चला दिया और मामा कहो पर हो बोले ना ए उमर गल सुनता ना, तब बोले उमर गल तब बोलन ओकर आत्मा जो ना तो अमर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा कभी मरती नहीं
1: है। मरेला कबू।
0: बिल्कुल।

0: कभी नहीं मरती है।
1: माता जी सुनियान जनिया उनकर संग में है, बस फिर उनकरे से संगीत सीख ली, उनकरे से ढोलक बजाई के सीख ली, उनकरे से प्यार मोहब्बत से जिए के सीख ली।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माँ पहला यूनिवर्सिटी होता है, माँ पहला स्कूल होता है और उनसे ही हम संस्कार सीखते हैं। और चलिए पूर्णिमा जी, आपने कहा कि आपने मम्मी से म्यूजिक सीखा है, तो 2-3 लाइन हो जाए आपकी आवाज में प्लीज।
1: माता जी की हाँ जान आवाज सुन हमारा सिखाई ले रहा बिटिया पर दे समाला भले सुनो अपने चिट्ठियो ना भेजे लिखी लिखी भेजे ला मोहरवा के माला मरतिया पर दे महला भले सुनो
0: ओह वेरी नाइस वेरी नाइस, आपको बहुत बहुत बधाई पूर्णिमा जी, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है।
1: बहुत धन्यवाद।
0: तो चलिए पूर्णिमा जी, हाँ जी बताइए।
1: और हमारे पांच गो भाई चार गो बहन, पांच गो भाई चार गो बहन तौंसिस की सौंप हमार माँ के।
0: ओहो काफी बहुत काफी बड़ा परिवार है।
1: बहुत भारी परिवार, नायको परिवार से हमने के आज हमार माँ दलन माउथ के ओगु ओका चिनाचा ओगु हौजा के मामजेल रलन है जगह पर हम शादी करलन हमारे पिताजी से तो हमने नायको चिनाचा आर हम हाई मैडम फुकीरा
0: ओके
1: आई ना वहां से जस्ती प्रचलित है तो फिर हम जब अस्पताल काम कर ले हैं तो हमारा सब कोई मैडम फुकीरा।
0: ओ ओ आप बहुत ही पॉपुलर हैं, मुझे
1: हमरा पूर्णिमा बोलेला
0: पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं मे बी उनमें से मेजोरिटी आपको पहचान पा रहे होंगे। तो चलिए उन लोगों के नाम भी हम अगला गाना डेडिकेट करेंगे। पूर्णिमा जी थैंक यू सो मच हमें फोन करने के लिए,
1: और
0: चलिए आपका ये गाना बहुत ही शुभ रात्रि आपको भी, एंड आपका ये गाना हम 8 बजे के बाद ही चलाएंगे और आप सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच,
1: मैं हबे से सवेरे तक आपका इंतजार करूंगी।
0: That's really sweet of you. Thank you so much, पूर्णिमा जी, शुभ रात्रि।
1: हाँ बहुत धन्यवाद।
0: तो चलिए ये थी हमारी प्यारी सी पूर्णिमा जी, एंड चलिए जब भी कोई ऐसी बात करती है ना तो अपनापन झलक जाता है, और कितनी हंसमुख है हमारी प्यारी सी पूर्णिमा जी। तो चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, एंड बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, एंड इस गाने के साथ ही हम कदम रखेंगे इन द सेकेंड आवर ऑफ इवनिंग लाउंज।
2: Evening Lounge.
3: RM2.
2: Radio Musti.

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

वेल चलिए यहाँ पर आपसे काफ़ी हमारी बातें हो रही थी ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर. अभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं 4028235 पर. आप ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर आपके मैसेजेस 5499-1294. चलिए कब से आप लोग अपने मैसेजेस का इंतज़ार कर रही हैं तो बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर. हाय दिव्या जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. एंड चलिए आपको गाना सुनना है फ्रॉम द मूवी देवदास, सिलसिला ये चाहत का. अगर पॉसिबल हुआ तो हम ज़रूर चलाएंगे. प्यारी सी अनीता जो फ्लिक ऑफ लाक, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. हाय दिव्या, क्रिस्टी हियर फ्रॉम रिविया दे क्रियोल. नेक्स्ट गाना स्पेशली टू हबी विक्रम, आपके ट्विन्स हैं कौशिक कौशल के लिए. एंड आप कहते हैं लव देम सो मच. ऑल्सो फॉर आवर रेडियो मस्ती टीम, हैव अ ग्रेट नाइट एंड वंडरफुल वीकेंड टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच. एंड साथ में यहाँ पर आप कहते हैं हेलो नमस्ते, डेडिकेटिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग टू माई अमेजिंग मॉम पिंकी जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. तो आपकी मम्मा को बहुत बहुत सारा प्यार हमारी टीम की तरफ से भी. ऑल्सो फ्रॉम हर किड्स हस्बैंड एंड मम्मा की तरफ से हेलो प्यारी दिव्या जी. वाओ.

0: वेरी नाइस प्रोग्राम रेखा जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. नेक्स्ट गाना गुजार स्पेशली फॉर यू. आपका बेटा है अंश फ्रॉम पोमोजो एंड कुमार सानू का कोई भी गाना आप सुनना पसंद करेंगी. तो चलिए हम कोशिश करते हैं. एंड यहाँ पर किसी ने हमें कहा है कि हेलो गुड इवनिंग दिव्या, थैंक्स पूर्णिमा नायको एवरी नायको फैमिली फ्रॉम कमल दीप ऑफ प्लैंड होश. देखा पूर्णिमा जी, हमने कहा था ना कि आपने कहा कि आप काफ़ी पॉपुलर हैं, तो आप का जान पहचान वाला तो उन्होंने मैसेज भेज ही दिया है. तो चलिए यहाँ पर कमलदीप जी साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. एंड ये अगला गाना गोज टू ईच एंड एवरीवन जो इस वक्त जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. शायद आपको भी आज ही पता चला होगा कि शायद आपको प्यार है और बस जब प्यार होता है तो इतना सोच समझ कर नहीं होता है। गाना तो आपने सुना ही होगा, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता है।

बस खो ही जाता है। शायद ये गाना हम ऑलमोस्ट ऑल द टाइम आपके लिए हम गाते रहते हैं, क्योंकि बस यही गाना है जो प्यार को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है। अगर हम प्यार को डिस्क्राइब करने के लिए निकल जाएंगे ना, तो बस या तो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे या तो अल्फाज मिलेंगे ही नहीं। 8:20 थर्सडे इवनिंग 18 जून 2026, दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। हर एक गीत को ऐसे ही एंजॉय करते रहिएगा और हर एक गीत को प्यार की तरह सीने से लगाकर सुनते रहिए और ट्राई टू रिवाइव सम ब्यूटीफुल एंड गोल्डन मेमोरीज।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti. Well, we have this beautiful one, lucky movie से लिया गया. प्यार में सब लोग lucky ही होते हैं. अब ये depend करता है कि आप किस तरीके के शख्स के साथ relationship में हैं. लेकिन प्यार हमेशा खूबसूरत ही होता है. Well, we have this one, सोनू निगम की आवाज में. अभी दिल के सुनिए और बस एक पल के लिए थोड़ा ठहर जाइए और सुनिए कि आपका दिल आपसे क्या कुछ कहना चाहता है.

0: 40 मिनट हो चुके हैं, चलिए बढ़ते हैं कुछ और आपके मैसेजेस की ओर। रनीता जी, आप हैं क्यूपिप से, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। वैसे गाना रिक्वेस्ट किया है आपने अभी के लिए, तो आई गेस नहीं चला पाएंगे, बट नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे। ज्योति जी, आप हैं शादी बनारस से, नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर आशनी, रेखा, सुरेखा, वादप फैमिली एंड हमारी टीम के लिए। हाई नमस्ते, आम जान फ्रॉम कहोलिन, डेडिकेटिंग रोमांटिक सॉन्ग टू माई जानू, वो उनका नाम है मोनू, जो अभी ड्राइव कर रहे हैं, और चलिए उनके लिए बहुत ही प्यार से आपने ये गाना मांगा है। और आई कैन सी कि आपका मैसेज यहाँ पर थोड़ा इनकम्प्लीट आया है, तो चलिए आई जस्ट होप कि आपका मैसेज आपके मोनू तक ज़रूर पहुँचा होगा। एंड यहाँ पर डेडिकेटिंग द नेक्स्ट ट्रैक टू ईच एंड एवरी वन जो शायद नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे, अगर आप लोग इस वक्त काम करते करते हमारा साथ दे रहे हैं, बस अभी थोड़ा सा काम करते करते अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को एंड वर्कलोड को थोड़ा सा दूर कीजिए, बिल्कुल पूरा पूरा फोकस आपको चाहिए ही चाहिए, और इसलिए गुड म्यूज़िक का साथ देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फुल फोकस के साथ हमारे गीतों को एंजॉय करते रहिएगा।
1: Evening Lounge, Evening Lounge, RM2, Radio Masti.

0: Well, that was a beautiful gana taken up from the movie Aryan. And chaliye aapke kuch aur messages ki aur hum badhenge. And yahan par next gana goes out for Sita Bhuluram, aapki mom Bhagwanti ke liye. And Dari ki Jing, the next gana for बहन गीता दत्तू एंड दीदी हैं जी जो राकेश के नाम. थैंक यू सो मच. डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना टू मदर इन लॉ शांति मदब फॉर हर 77th बर्थडे. उनको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ गुड विशेज फ्रॉम डॉटर इन लॉ सरिता. बेटा है कबीर. आई डोंट नो अगर आपने और भी मैसेज भेजा होगा, बस इतना ही मैसेज हमें रिसीव हुआ है. एंड चलिए इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. एंड हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल सेम टाइम, यानी कि शाम के 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच, लेकिन एक अलग ही मूड के साथ क्योंकि कल फ्राइडे है. तो चलिए आप थोड़ा सा खुश हो जाइए क्योंकि कल शायद आप बहुत ही एक वाइड एंड ब्रॉड स्माइल के साथ उठेंगे, नोइंग दैट टुमोरो विल बी द डे जो आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. तो चलिए यहाँ पर हमारा और आपका साथ यहीं तक था. कल ज़रूर मुलाकात होगी. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग. शुभरात्रि, शब्बा खैर.
1: Evening Lounge. Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.
0: यहाँ पर लास्ट में हमें एक मैसेज आया है. प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर जूही फ्रॉम वीर. अनला के लिए आपने एक गाना मांगा मेरे हाथ में फ्रॉम द मूवी फना. अभी के लिए तो हम नहीं चला पाएंगे वीर, सो सॉरी फॉर दिस. लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप मैसेज थोड़ा जल्दी भेजना तो हम बिल्कुल आपका ये गाना कंसिडर करेंगे. तो फिलहाल के लिए दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर जूही एंड वीर.

हेलो माय डियर लिसनर्स, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग. प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें, नहीं तो आपके साथ टिल मिडनाइट एंड इट्स योर लेट नाइट ग्रूव. सो आइए शुरुआत करते खूबसूरत गीत के साथ. और आज आप

बॉलीवुड के उस दुनिया में ले चलेंगे। वैसे गीत तो हैं हजारों और उन गानों के बीच ऐसी आवाजें भी होती हैं, ऐसे सिंगर्स भी होते हैं और रहे हैं जिन्होंने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की जिंदगी पर कितना गहरा असर किया है। चले कौन है वो जानते हैं एक साथ।

के इतिहास में अगर हम जरा पल भर के गानों को अलग कर दें, तो कहानियां अधूरी लगती हैं, है ना? हर हीरो और हीरोइन की पहचान उनके चेहरे से नहीं, बल्कि उनके लिए गाए गए गीतों से बनी है। यही तो है जादू प्लेबैक सिंगर्स का, जो अपनी आवाज से स्क्रीन पर जीवन भर देते हैं।

राज कपूर के लिए मुकेश जी ने जो जीना यहाँ मरना यहाँ गाया, उन्होंने राज कपूर को एक ऐसा भावुक इंसान बना दिया जिसे लोग दिल से अपना समझने लगे। देवानंद के अंदाज में मोहम्मद रफी जी की आवाज थी जो हर मुस्कान के पीछे एक रोमांस भर देती थी, और किशोर कुमार, उनका जुनून की हंसी, उनका दर्द, सब सब मिलकर हर एक्टर को जिंदा कर देते।

0: चेहरा मिलकर एक ऐसी जोड़ी बनती है जो दिल पर छा जाती है। जैसे लता मंगेशकर ने मधुबाला के लिए जब आएगा आने वाला गाया तो लगता था जैसे खुद मधुबाला गा रही हो। आशा भोसले जी की खिलखिलाहट ने हेलन के डांस नंबर्स में बिजली भर दी थी। ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक्टर्स के इमोशंस के जज्बात के जरिया।
1: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

0: You're well tuned to Radio Musti. It's your late night grooves. और बात इन सिंगर्स के बारे में हो रही है जिन्होंने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो किया है या फिर ऐसे छाप छोड़े हैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के जीवन में जिनसे उनका करियर ऊंचाई तक पहुंचा। सिंगर्स वैसे उन्होंने एक्टर्स को एक जज्बाती पहचान दी है। उन्होंने उनके दर्द, उनके प्यार, उनके सपने और उनके सफर को अपनी आवाज में डाल दिया। जितेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, हर दौर के हीरो के साथ कुछ ऐसी आवाजें जुड़ी हैं जो उनकी पहचान बन गई। किशोर कुमार के बिना राजेश खन्ना अधूरे लगते थे और उदित नारायण के बिना 90s का शाहरुख खान कल्पना से परे।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है।
3: Radio Musti, all the way.
4: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

भी जब कोई पुराना गीत सुनाई देता है तो वही एक्टर या एक्ट्रेस दिखाई देते हैं, क्योंकि सिंगर ने सिर्फ एक सॉन्ग नहीं गाया है, क्योंकि उसने एक रूह दी है कैरेक्टर को। उनके सुर ने फिल्मों के जज्बात को अमर कर दिया और हम सब के दिल में एक जज्बा छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि बॉलीवुड के सिंगर्स ने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने जिंदगियां लिखी हैं। एक्टर्स ने तो बस उन्हें स्क्रीन पर ही जिया है।

0: बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां सुर और चेहरा मिलकर जादू रच देते हैं, जहां एक गाना सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। पिछले कई दशकों से सिंगर्स ने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के दिल को अपनी आवाज से ऐसा रूप दिया है जिसे दुनिया ने अमर कर दिया। वक्त के साथ साथ नए युग के सिंगर्स आए और उन्होंने नए हीरोज और हीरोइंस को नए जज्बात दिए। अरिजीत सिंह ने रोमांस को एक नई पहचान दी जब रणबीर कपूर या वरुण धवन स्क्रीन पर रोते या मुस्कुराते हुए तो उनके पीछे अरिजीत की आवाज होती है जो दिल को छू जाती है। जुबिन नौटियाल ने तो प्यार और उदासी दोनों को एक सुकून भरा अंदाज दिया जैसे हर गाना एक कहानी हो। श्रेया घोषाल की तो बात ही अलग है, उसने तो अपनी मीठी आवाज से दीपिका, आलिया और कैटरीना जैसे हीरोइंस को एक नई नरमी दी।
1: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 Radio Musti।

दौर के सिंगर्स सिर्फ प्लेबैक ही नहीं करते, वो एक्टर्स के स्क्रीन प्रेजेंस का हिस्सा भी बन गए हैं। आज के गाने में जो जज्बात होता है वो एक्टर की आंखों में उतर जाता है। किसी हार्ट ब्रेक सीन में अगर अरिजीत या प्रीतम का कंपोजिशन बजता है तो लगता है जैसे पूरा इमोशन आवाज के थ्रू बहता जा रहा है।

ये जेनरेशन के सिंगर्स डिजिटल जमाने के हैं, लेकिन उनका असर दिल तक जाता है। उन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग के बीच की रेखा मिटा दी है। आज के एक्टर्स भी इन सॉन्ग से अपने इमेज बनाते हैं, जैसे शाहिद कपूर और रणबीर कपूर का कबीर सिंह या ए दिल है मुश्किल के गानों से उनका एक इंटेंस लव वाला रूप उभर आया है।

पुरानी पीढ़ी ने हमें सुरों का समंदर दिया और नई पीढ़ी उस समंदर में नए रंग खोली जा रही है। हर युग में एक बात तो सेम रही है कि बॉलीवुड के सिंगर्स ने सिर्फ गीत ही नहीं गाए, उन्होंने हर एक्टर के चेहरे पर जज्बात लिखे हैं और हर हीरोइन के दिल में महका हुआ एहसास भर दिया है। आज भी जब कोई नया गाना चलता है तो हम बस एक्टर को नहीं देखते हैं, हम उस सिंगर की रूह महसूस करते हैं जिन्होंने उसके इमोशंस को आवाज दी है, क्योंकि बॉलीवुड के लिए सिंगर सिर्फ आवाज नहीं, आत्मा भी है।

के दौर के रोमांटिक सॉन्ग्स में मॉडर्न टच है, पर भावना वो ही है। वी हैव अरिजीत सिंह। वैसे अरिजीत सिंह ने तो अनाउंस कर ही दिया है कि वो रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग, लेकिन संगीत से उनका जुड़ाव हमेशा रहेगा। श्रेया घोषाल, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, ऐसे कलाकारों ने प्यार को नई आवाज दी। तुम ही हो राबता अगर तुम साथ हो, तुमसे ही जैसे गाने दर्द, इंतजार और मोहब्बत को एक साथ पिरो देते हैं। इन गीतों में जज्बात की गहराई है जो सीधे दिल तक पहुंचती है।

में बॉलीवुड म्यूजिक इंटरनेशनल साउंड से प्रभावित हुआ। वी हैव ए रहमान, उन्होंने रोमांस को सुकून और रूहानियत दी। तुमसे ही, तेरे बिना, कल हो न हो जैसे गाने अब उन प्यार की कहानी सुनाते हैं, थोड़ा रियल थोड़ा पोएटिक। देन वी हैव 2010 से अब तक, इमोशन ड्रिवन और सोलफुल लव। आज के रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव हो गए हैं। कुछ मैशअप्स, कुछ रेमिक्सेस, कुछ अलग तरीके से ही गाने बनाए जा रहे हैं। प्यार के साथ साथ वल्नरेबिलिटी, हार्ट ब्रेक और लॉन्गिंग ज्यादा दिखती है। आज के जो गायक हैं, उन्होंने रोमांस को दिल की गहराइयों से जोड़ दिया। रिलेशनशिप के सच्चे, कभी कभी टूटने वाले पहलू भी दिखते हैं।

Well, best romantic songs की खूबसूरती तो यही है कि हर पीढ़ी को जोड़ देते हैं। ये गाने वक्त, उम्र और दूरियों की सीमा को पार कर जाते हैं। जब कोई पुराना रोमांटिक गाना बजता है तो बीते हुए लम्हे आंखों के सामने आ जाते हैं, और जब कोई नया रोमांटिक गाना सुनते हैं तो लगता है कि जैसे प्यार फिर से जवान हो गया हो।

इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती नीतों के साथ टिल मिडनाइट। और यहाँ पर जज्बात, एहसास, म्यूजिक, लव, लाइफ, ओ माय गॉड, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। अगर हाँ माने तो अपने आसपास हमेशा उन्हीं लोगों को रखें जिनके साथ हम खुल के हंस सके, बिना डरे अपनी बातें कह सके, और जो आपको आपकी असली रूप में एक्सेप्ट करे। लाइफ के असली हीरोज वही लोग हैं जो आपको बिना वजह भी मुस्कुरा देते हैं, बिना मांगे भी आपके लिए दुआ करते हैं।

रोमांटिक सॉन्ग्स हमें सिखाते हैं कि प्यार सिर्फ पाना ही नहीं बल्कि महसूस करना भी होता है। ये गाने खामोशी को अल्फाज देते हैं और दिल के कोने में छुपे जज्बातों को आवाज बन जाते हैं। शायद इसीलिए चाहे जमाना बदल जाए पर बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स हमेशा अमर रहे हैं और हमेशा अमर रहेंगे, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत की तरह। दैट्स व्हाई रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स का इवोल्यूशन एक सफर जैसा है। शर्म से शुरुआत, जज्बात से गुजर और सच्चाई पर आकार रुकता हुआ। सुर बदले, अंदाज बदला, पर प्यार की रूह हमेशा जिंदा रही। टेक केयर, बाय बाय, प्रणाम।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
3: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर

0: 104.2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
3: लड़की बड़ी अनजानी है।
0: Radio Masti, all the way.
4: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
0: Radio Masti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

the latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक गाएगा।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

से हैं बातें, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें,

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।